0: பண்பலையில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சலாக கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय

0: बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में विहरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will address 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO Summit is being held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. Mr. Modi is on a 2-day visit to Kyrgyzstan to attend the summit. On the first day of his visit, PM Modi engaged in cultural events, paid tribute to Mahatma Gandhi, attended the opening ceremony of the 6th World Nomad Games alongside other world leaders. Mr.

0: பக்தி பாடல்களால் இதுவரை நேயர்களை மகிழ்வித்து சென்றது தேனிசை ஆகாஷவாணியின் எஃப்எம் கோல்ட் 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸில். மீண்டும் தேனிசை கேட்கலாம் நாளை காலை 6:10. பண்பரையில் தொடர்வது சமஸ்கிருதத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சலாக கேட்கலாம்.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்பிரதி வார்த்தாஹ ஸ்ருயந்தாம் பிரவாச்சிகா நிதி ஜா. अथ वार्ताः. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अन्यैः शंघाई सहयोग संघटनस्य नेतृभिः सह ह्यः सायं किर्गिस्तानस्य राजधान्यां बिश्केक इत्यत्र आयोजिते षष्ठे वर्ल्ड नॉमेड गेम्स इत्यस्य आधिकारिकोद्घाटने भागं गृहीतवान्. अयं कार्यक्रमः यायावर सभ्यतानां समृद्ध क्रीडा परंपराणां संस्कृतेः सांस्कृतिक वैभवस्य च उत्सवरूपेण आयोज्यते. इतः प्राग् प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संघटन शिखर सम्मेलनस्यावधौ रूस, ईरान, किर्गिज गणराज्य, आर्मेनिया देशानां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृतवान्. प्रधानमंत्री अद्य

0: हर सुबह एक खत लिखती है नए दिन के नाम, कुछ सपने रखती है, कुछ उम्मीदें तमाम। कहती है जो बीत गया उसे जाने दो, आज जो सामने है उसे अपना बना दो। जी हाँ, जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन को बेहतर बनाने की गुंजाइश जरूर होती है। बीता हुआ कल चाहे जैसा रहा हो, नई सुबह हमें फिर से अपनी कहानी का एक नया पन्ना लिखने का मौका देती है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम पुराने डर और बीती हुई बातों का बोझ थोड़ा हल्का करें और आज को पूरी तरह जीने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार बदलाव किसी बड़े फैसले से नहीं बल्कि एक छोटी सी उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत करने से आता है। तो आइए इस सुबह का स्वागत करें उम्मीद के साथ, मुस्कुराहट के साथ और इस भरोसे के साथ कि आज का दिन अपने भीतर कुछ अच्छा जरूर समेटे हुए है। इसी सकारात्मक सोच के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सिवरे में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
1: हेलो वैष्णवी। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड डे एवरीबॉडी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल, गेट आउट ऑफ बेड एंड टर्न इट अप एंड वी आर लिसनिंग टू सच अ ब्यूटीफुल रेंडिशन एंड द म्यूजिक दैट वी आर लिसनिंग इन द बैकग्राउंड, इट सेट्स द टोन फॉर आवर प्रोग्राम आज सवेरे।

0: With Meesha Gun Chopra and Vaishnavi today. Well, we are bringing you the latest national, international news and the Metro City updates as well, and the history for today. Today it's 1st of September 2026, and yes, life always moves forward, as Vaishnavi started on a very positive note. So listeners, track down your activities for the day and the upcoming days. Actually, only 4 months are left.
1: Bilkul.
0: Right, for this year to end. Exactly. So on that note, let's begin our program with the headlines first.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6वें विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक
0: India is taking part in the two-day G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in Asheville, US on its final day today. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is leading India's delegation. The meeting under the US G20 presidency is focusing on global economic growth, financial stability, rising debt, trade, investment and reforms to the international financial system. US Treasury Secretary Scott Bessent has stressed the need for stronger growth, higher investment and better productivity to tackle growing global debt. India is using the meeting to highlight the needs of emerging economies and promote sustainable growth, trade and investment.
2: भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज होने के बाद अमेरिका ने भारत को एक गतिशील, मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था बताया है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि भारत की विशाल और विस्तारित अर्थव्यवस्था अमरीकी कंपनियों और निवेशकों के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है।
0: So listeners, today the 4th Indo-German Environmental Forum will be held in New Delhi to strengthen bilateral cooperation and facilitate multi-stakeholder exchange on environment and climate change. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav, along with German Minister for Environment, Climate Protection, Nature Conservation and Nuclear Safety Carsten Schneider will co-chair the forum. So both sides will be discussing key issues relating to environmental protection and climate policy to further strengthen bilateral cooperation, exchange experiences and advance practical collaboration. The forum will provide a platform for bilateral exchanges among policy makers, private sector representatives, think tanks and other key stakeholders on environmental and climate cooperation between the two countries.
2: नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जलविद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों को पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 939 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,925 लोग लापता है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। 19 सदस्यीय भारतीय फॉरेंसिक टीम ने काठमांडू में काम शुरू कर दिया है और बरामद अवशेषों की पहचान के लिए DNA परीक्षण में सहायता कर रही है।
0: Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, will be on a 3-day visit to India from tomorrow. During the visit, he will hold bilateral talks with Prime Minister Narendra Modi to discuss the entire spectrum of bilateral relations and regional and global issues of mutual interest. So Prime Minister De Wever will also deliver a keynote address at a business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. The External Affairs Ministry said the visit will provide an opportunity to further strengthen the India-Belgium partnership.
2: और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने कल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए मेसी के 20 वर्ष के करियर का अंत हो गया। इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। मेसी ने कहा कि स्पेन से विश्व कप फाइनल में मिली हार के बाद से ही ये फैसला उनके मन में था। उन्होंने कहा कि उनके पिता के निधन ने उन्हें और भी दृढ़ निश्चय दिलाया कि अब फुटबॉल से संन्यास लेने का समय आ गया है।
0: Well, yes,

0: the career, 20 years of a highly celebrated career of this star footballer, Lionel Messi.
1: अब जरा अपने सफर का रुख देश के अलग अलग शहरों की ओर करते हैं जहां आज की सुबह अपने साथ कई अहम गतिविधियां लेकर आई हैं। शुरू करते हैं राजधानी दिल्ली से जहां आज की खबरों में क्या कुछ खास है आइए जानते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मसौदा कल प्रकाशित किया गया। मसौदा सूची के अनुसार दिल्ली में कुल 1,45,10,299 मतदाता हैं, जिनमें से 97,53,577 ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। इनमें 49,88,993 पुरुष, 47,64,137 महिलाएं और 18 से 19 वर्ष के 1,03,870 मतदाता शामिल है। नागरिक मसौदा मतदाता सूची ceodelhi.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं, जिनका निपटारा 29 अक्टूबर तक होगा। वहीं दिल्ली सरकार ने DTC बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाली मौजूदा पेपर बेस्ड पिंक टिकट व्यवस्था को 17 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सरकार ने यह फैसला पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड व्यवस्था में सुचारू बदलाव और आने वाले त्योहारों के दौरान महिला यात्रियों को किसी तरह की परेशानी से बचाने के लिए लिया गया है। तो कुल मिलाकर इस बदलाव से महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा बिना किसी रुकावट के मिलती रहेगी और स्मार्ट कार व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रा को और आसान और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।
0: या द पिंक कार्ड
1: जी।
0: ग्रेट। नाउ वी आर हेडिंग टू चेन्नई वेयर ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन विल लॉन्च अ वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन ऐप नेक्स्ट वीक एज पार्ट ऑफ इट्स मॉनसून प्रिपेयरनेस ड्राइव द वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन ऐप And through this, residents can register to help in relief and rescue operations in the event of floods or other disasters. So the civic body is preparing 215 flood relief centers and 111 community kitchens as well to enhance the preparedness. And the corporation has kept 36 of its boats and 285 fishing boats arranged through the fisheries department on standby along with trained operators. This is the part of their monsoon preparedness drive. This is what I had from Chennai. Now, where are we heading to?
1: Maharashtra.
0: Yes.
1: बढ़ती स्पर्धा के इस दौर में छात्रों और पढ़ाई और बेहतर प्रदर्शन का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उनके मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि छात्रों को ये समझना जरूरी है कि सफलता और असफलता दोनों ही जिंदगी का हिस्सा है। इस सोच को अपनाना उनके मानसिक और समग्र विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सुश्री तटकरे ने ये बात मुंबई की सैफी तैयबजी गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। शगुन, ऐसे में हमें बच्चों को समझाना बेहद जरूरी है कि जिंदगी में हर सफलता तक पहुंचने के लिए बस एक और कोशिश की जरूरत हो सकती है। मंजिल आज नहीं तो कल जरूर मिल सकती है, तो क्यों ना अपनी कोशिशें जारी रखें, नाकामी के डर को पीछे छोड़ा जाए और हर अनुभव से सीखकर कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश की जाए।
0: Well, it's always about that last attempt, you know, the one more attempt actually, what I mean to say, yes.
1: जी, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप असफल नहीं होंगे तो आपको सफलता की वो जो वैली होती है वो आपको नहीं समझ में आएगी।
0: You won't be able to gather that
1: जी,
0: much.
1: बिल्कुल.
0: And you will be able to gather knowledge as well based on your experiences then, right?
1: जी, और आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट समय सीमा तय कर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अफ्रीकी सफारी की प्रगति, बुनियादी ढांचे और उसके शुरू होने की समय सीमा की जानकारी ली और सभी जरूरी कार्य तय समय में पूरा करने को कहा। श्री फडणवीस ने कहा कि गोरेवाड़ा को विदर्भ के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
0: सो नाउ लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू बेंगलुरु। द फर्स्ट अपडेट फ्रॉम देयर, इट्स अबाउट अ क्रेश, अ रीइमेजिन्ड क्रेश फॉर द यंग चिल्ड्रन ऑफ इट्स स्टाफ, द स्टाफ फॉर नीमहंस। सो नीमहंस इनॉग्रेटेड अता पता Yesterday, this is actually the reimagined creche for young children, and this is designed to promote play, exploration, movement, and early learning. The facility features child-friendly materials, gentle lighting, spaces for active play, and opportunities for nature and sensory exploration, which

0: should be a part of the creche, of any creche actually. This initiative aims to provide safe and nurturing childcare for working parents while supporting children's early development and mental well-being. Atapata, this is the reimagined creche. Another update, Vaishnavi, for our listeners. Hundreds of Bengaluru residents gathered at Lal Bagh on Sunday as part of the Walk in Lal Bagh, Walk for Lal Bagh campaign. And they protested the recent amendment to the Karnataka Government Parks Preservation Act that permits up to 5% of protected park land to be used for public utilities. This protest followed the Karnataka Assembly's passage of the Karnataka Government Parks Preservation Amendment Bill 2026, under which 12 acres of Lal Bagh and 15 acres of Cubbon Park can be utilized for public infrastructure. Right? And Bengaluru South BJP MP Tejasvi Surya, who joined the protests, he said, the development should not come at the cost of city's iconic green spaces. He demanded withdrawal of the proposed tunnel project and urged the government to protect Lal Bagh and other parks as well from encroachment and commercial interests. This is what happened in Bengaluru.
1: और बेंगलुरु से आगे बढ़ते हैं कोलकाता की तरफ. पश्चिम बंगाल सरकार ने आम लोगों को किफ़ायती दरों पर प्याज और चीनी उपलब्ध कराने के लिए विशेष पहल शुरू की है. इसके अंतर्गत कृषि विपणन विभाग ने कोलकाता में 50 मोबाइल वैन शुरू की है, जहां प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है.
0: 50 मोबाइल वैन्स, राइट?
1: जी, और जल्द ही इस सुविधा को राज्य के अन्य जिलों तक भी पहुंचाने की योजना है. वहीं दूसरे राज्यों से अधिक मात्रा में प्याज खरीदने को लेकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आज निफेड के साथ बैठक करेंगे. चीनी की कालाबाजारी रोकने के लिए टास्क फोर्स कोलकाता समेत अन्य जिलों में लगातार छापेमारी कर रही है.
0: सो नाउ वी आर हेडिंग टू हैदराबाद. The Department of Posts Telangana Circle is set to host the second All India Postal Para Badminton and Para Table Tennis Tournament from today till Thursday in Hyderabad. The event aims to promote athletic excellence, also celebrate sportsmanship and foster inclusion among para athletes across the country. The grand inauguration will take place in Moinabad, Hyderabad, with Sri Konda Vishveshwar Reddy, Honorable Member of Parliament for Chavela, officiating as the chief guest. So the three-day tournament will be graced by several prominent dignitaries and celebrated sports icons. MLA for Chavela, Arjuna Awardee Deepti Jeevanji and Dronacharya Award winner Nagapuri Ramesh. So listeners, for you all, these were our Metro City updates.
1: चलिए अब जान लेते हैं आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है. दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. वहीं मुंबई में भी आसमान बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश हो सकती है. यहाँ अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. और कोलकाता में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कैसा मौसम रहने वाला है शगुन?
0: Well, it's pretty much same because of light rain which is expected in चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद. बिगिनिंग विद चेन्नई, इट इज लाइकली It's the possibility for partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Minimum temperature will be around 27 degrees Celsius and maximum temperature will be around 37 degrees Celsius in Chennai. Bengaluru is forecast to experience generally cloudy sky with the possibility of light rain. The minimum temperature is expected to be 20 degrees Celsius while maximum temperature may reach 29 degrees Celsius in Bengaluru. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with light rain. Temperatures are expected to range from 24 degrees Celsius to 30 degrees Celsius in Hyderabad. So these were the weather updates from Metro Cities.
1: और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को. आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज 1 सितंबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में.
0: सो फर्स्ट We are beginning with the year 1668, Vaishnavi. Mm-hmm. King Charles II of England handed over the island of Bombay, now Mumbai, to the British East India Company for an annual rent of just £10. In 1798, the Nizam of Hyderabad signed a treaty with the British East India Company and officially entered the subsidiary alliance system. This made Hyderabad the first prince.

0: princely state to accept British paramountcy in exchange for military protection. In 1939, Nazi Germany invaded Poland, triggering the declaration of war by Britain and France 2 days later.
1: और स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए भी ये तारीख कई मायनों में अहम रही। सन 1947 में आज ही के दिन भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया गया, जिसने पूरे देश को एक समान समय व्यवस्था से जोड़ा। वहीं सन 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना हुई, जो आगे चलकर देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के रूप में उभरी।
0: इन 1942 राज बिहारी बोस एस्टैब्लिश्ड द इंडियन नेशनल आर्मी।
1: और 1962 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो आज भी उच्च शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। वहीं सन 1964 में इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी के विलय से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का गठन हुआ, जो आज देश की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में गिनी जाती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तारीख का अपना महत्व रहा है। सन 1994 में उत्तरी आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने युद्ध विराम लागू किया, जिससे शांति की दिशा में एक अहम कदम माना गया। और 1997 में आज ही के दिन साहित्यकार महाश्वेता देवी और पर्यावरणविद MC मेहता को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
0: वेल टुडे लेट्स आल्सो टेल आवर लिसनर्स दैट इट्स वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे टुडे। दिस इज एन इंटरनेशनल डे व्हिच इज डेडिकेटेड टू द ट्रेडिशन, टू द आर्ट एंड आल्सो द अप्रिसिएशन फॉर ऑफ राइटिंग हैंड रिटन लेटर्स।
1: Obviously, उसका कोई मुझे लगता है कि लोग भले आजकल चैटिंग और इसमें लग गए हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे स्पेशल होता है गिफ्ट। आप किसी को बर्थडे पे अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट है कि आप हैंड रिटन लेटर्स, आप अपने एक्सप्रेशन फ्रीली आप उसमें दिखा एक्सप्रेस कर रहे हैं, और साथ में एक वो यादें आपके पास हमेशा जुड़ी रह जाती है हमेशा के लिए।
0: वेल दैट इज ट्रू, एंड इट ऑल्सो अनलाइक इंस्टेंट टेक्स्ट और ईमेल्स व्हिच वी नाउअडेज आर मोर अकस्टम टू, अ फिजिकल लेटर इट कैप्चर्स अ पर्सन्स यूनिक हैंड राइटिंग एज वेल।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है कि भले आपके चैट सब डिलीट हो जाए, मेल बैकअप ना ले सके, लेकिन ये आपके पास हमेशा रहने वाला है।
0: द पेपर
1: जी,
0: द डिलिबरेट थॉट्स एंड द पर्सनालिटी, एंड इवन इफ योर हैंड राइटिंग इज नॉट दैट गुड, इट स्टिल कम्युनिकेट्स द फीलिंग्स, एंड दिस सर्व्स एज टैंजिबल कीपसेक्स दैट पीपल ट्रेजर फॉर अ लाइफ टाइम। एंड राइटिंग ऑन पेपर इट एक्ट्स एज अ फॉर्म ऑफ अ डिजिटल डिटॉक्स एज देम, राइट?
1: बिल्कुल,
0: एंड दिस फोर्सेस अस टू स्लो डाउन, टू रिफ्लेक्ट डीपली एंड टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस विद केयर। सो व्हाट कैन आवर लिसनर्स डू टुडे? They can grab a blank piece of paper and then write a letter to their friend or a family member, in fact, right?
1: बिल्कुल, और बल्कि खुद को भी लिख सकते हैं चाहे तो।
0: A note of appreciation, self-appreciation, very good idea. Or a funny memory or a simple normal hello to a friend, a partner or a parent.
1: Right? जी, बिल्कुल।
0: So this was all about World Letter Writing Day.
1: जी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं उन व्यक्तित्वों का स्मरण करते हैं शकुन, जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
0: दिस इज व्हाट वी ऑल बीन वेटिंग फॉर।
1: जी, शुरू करते हैं डॉक्टर मकरंद मेहता से। इतिहास सिर्फ राजाओं, योद्धाओं और सत्ता के बदलावों की कहानी नहीं है, इतिहास उन लोगों की कहानी भी है जिन्होंने समाज, व्यापार और शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी व्यापक दृष्टि के साथ इतिहास को देखने और समझने वाले प्रख्यात इतिहासकार थे डॉक्टर मकरंद मेहता। आज उनकी पुण्यतिथि है। डॉक्टर मकरंद मेहता ने विशेष रूप से गुजरात के सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक इतिहास पर महत्वपूर्ण शोध किया। उन्होंने अपने अध्ययन के जरिए इतिहास के उन पहलुओं को भी सामने लाया जिन पर अक्सर कम चर्चा होती है, जैसे व्यापारियों का योगदान, कपड़ा उद्योग का विकास, विदेशों में बसे गुजरातियों का इतिहास और समाज के अलग अलग वर्गों की भूमिका।
0: Listeners, today we are also remembering experimental physicist, inventor and professor Louis Walter Alvarez. He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1968 for his discovery of resonance states in particle physics using the hydrogen bubble chamber. In 2007, the American Journal of Physics commented that Louis Alvarez was one of the most brilliant and productive experimental physicists of the 20th century. Alvarez devised a set of experiments to observe K electron capture in radioactive nuclei predicted by the beta decay theory, but never before observed. So he was the first one to do it. He produced tritium using the cyclotron and measured its lifetime in collaboration.

0: radiation with Feliks Bloch, he measured the magnetic momentum of the neutron. I was telling you about Luis Walter Alvarez, the physicist, inventor and professor.
1: आगे बढ़ते हैं. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ ऐसे युवा क्रांतिकारी भी हुए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया. जीवन घोषाल, जिन्हें माखनलाल के नाम से भी जाना जाता था, ऐसे ही जाबांज क्रांतिकारी थे. वे मास्टरदास सूर्यसेन के नेतृत्व में चल रहे चटगांव के सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे और चटगांव शस्त्रागार कांड में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई. इस घटना के बाद वे अंग्रेजी पुलिस से बचते हुए भूमिगत हो गए और चंद्रगनगर में रह रहे थे. लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों की भनक अंग्रेजी पुलिस को लग गई. 1 सितंबर 1930 को पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट के नेतृत्व में उनके ठिकाने पर छापा मारा गया. पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में जीवन घोषाल शहीद हो गए. उनकी उम्र उस समय महज 18 वर्ष थी. उतनी कम उम्र में देश के आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जीवन घोषाल का नाम आज भी स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारियों में सम्मान के साथ लिया जाता है.
0: वेल, वी सैल्यूट द ब्रेव हार्ट. लिसनर्स, टुडे वी आर आल्सो रिमेंबरिंग द सिंगर एंड एक्ट्रेस एथल वाटर्स, एंड शी फ्रीक्वेंटली परफॉर्म जैज, स्विंग एंड पॉप म्यूजिक ऑन द ब्रॉडवे स्टेज एंड इन कॉन्सर्ट्स. वी विल नाउ लिसन टू हर वॉइस एंड द सॉन्ग व्हिच वी चोज, इट्स स्टॉर्मी वेदर.

शगुन, आप जब गीतकार के बारे में बात हो ही रही है तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की भी कुछ बात हो जाए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अपने विशिष्ट गायन शैली के लिए पहचाने जाने वाले तारापद चक्रवर्ती की भी आज पुण्यतिथि है। ख्याल और ठुमरी के साथ रागों की गहरी और विस्तारपूर्ण प्रस्तुति उनकी विशेष पहचान थी। वे कोटाली घराना के प्रमुख कलाकार और प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी कला की खास बात थी 48 मात्राओं के विलंबित प्रारूप में राग प्रस्तुत करना, जो बेहद कठिन माना जाता है। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। संगीत के साथ उनका रिश्ता आकाशवाणी से भी जुड़ा रहा। 1930 के दशक में उन्होंने कलकत्ता रेडियो केंद्र में संगीतकार के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर अपनी गायकी से अलग पहचान बनाई। तारापद चक्रवर्ती को श्रद्धांजलि देते हुए अब सुनिए उनकी आवाज में खूबसूरत प्रस्तुति।

0: तर तो तबियत से उछालो यारो। इन पंक्तियों में बदलाव की जो बेचैनी और व्यवस्था को चुनौती देने की साहस दिखाई देती है, वही दुष्यंत कुमार की रचनाओं की पहचान थी। आज ही के दिन 1933 को जन्मे दुष्यंत कुमार हिंदी के लोकप्रिय कवि और गजलकार थे।
1: वेल यस, पोएट ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, फेमस फॉर राइटिंग गजल्स and generally recognized as one of the foremost Hindi poets of the 20th century. He is also regarded as one of the most important writers of Hindi canon. His prolific style of writing has widely contributed towards shaping the genre of short stories in India.
0: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में अपनी बेबाक भाषा और समाज की सच्चाइयों को गहराई से सामने रखने वाले राही मासूम रजा का जन्म आज ही के दिन 1927 को हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार और पटकथा लेखक के रूप में समान रूप से प्रसिद्ध रहे। आधा गांव और टोपी शुक्ला उनके चर्चित उपन्यास है, जिनमें भारतीय समाज, रिश्तों और बदलते समय की तस्वीर साफ दिखाई देती है। उनके प्रभावशाली संवाद लेखन के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
1: टुडे लिसनर्स, लेट्स आल्सो टेल यू अबाउट हबीब तनवीर। वेल, अ नेम दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन थिएटर फॉरएवर। Known as the pioneer of modern Indian theatre, Tanveer was not just a playwright, director or an actor, but a cultural bridge who brought folk narratives into the mainstream stage. Right, Vaishnavi?
0: जी, और शगुन, आगरा बाजार और चरणदास चोर उनकी सबसे चर्चित नाट्य कृतियों में शामिल है। रंगमंच में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। आज भी भारतीय रंगमंच की चर्चा हबीब तनवीर के लेख के बिना अधूरी मानी जाती है।
1: That is true, Vaishnavi. Today it's also Barry Gibb's birthday, the musician, along with his younger fraternal twin brothers Robin and Maurice. He rose to global fame as a founder of Bee Gees, one of the most commercially successful groups in the history of popular music.

0: तो श्रोताओं, आज की आज सवेरे में बस इतना ही। उम्मीद है आज की मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी।
1: That's what we hope for. We thank you so much listeners for tuning in and we hope you have a great day ahead.
0: नमस्कार।

0: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला, मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
3: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
1: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
4: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first.

0: Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
2: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
3: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केउंझर के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक

0: मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, दो कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।

0: और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की GDP सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address SCO summit in Kyrgyzstan's capital, Bishkek today. Country's GDP grows 7.8% in first quarter of current financial year, beating RBI's projection of 7%. US describes India as dynamic, strong and resilient economy. New Delhi rejects Court of Arbitration award on Indus Water Treaty. Nepal rescuers blast hillside in search of hydropower workers as families wait anxiously. And Lionel Messi announces retirement from international football, ending legendary 21-year career with Argentina national team. Prime Minister Narendra Modi will address the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO summit has been held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. We have more from a correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi, in his address to the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit, will underline India's priorities in the areas of security, connectivity and opportunity. India has consistently opposed double standards in the fight against terrorism, separatism and extremism. India believes that greater connectivity among member countries is essential for peace and prosperity in the region. At the same time, connectivity projects must respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. India has also been emphasizing the need to create new opportunities for the youth of member countries and promote the startup ecosystem. India believes that the energy, innovation and entrepreneurship of young people can give a fresh impetus to regional development and cooperation. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
3: On the first day of his visit yesterday, PM Modi engaged in cultural events, paid tribute to Mahatma Gandhi, attended the opening ceremony of the 6th World Nomad Games alongside other world leaders. Mr. Modi held bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin yesterday. During his talk with Mr. Putin, Ms. PM Modi pushed for a diplomatic resolution to global conflicts, emphasizing the need to move from endless war to the end of war.
5: Ukraine ke vishay par hum hamesha charcha karte

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை அக்ஷய் பத்மநாபன் அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். மதுரை எஸ் பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் வயலின், ஹனுமந்தபுரம் ஜே பூவராகன் அவர்கள் மிருதங்கம்.
1: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 26वां वार्षिक शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है एससीओ के 25 वर्ष शांति, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ना। शंघाई सहयोग संगठन में भारत, चीन और रूस सहित 10 देश शामिल है। भारत वर्ष 2017 से संगठन का पूर्ण सदस्य है। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी संगठन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत के लिए एससीओ प्रमुख देशों के साथ सुरक्षा, आतंकवाद, ऊर्जा, संपर्क और आर्थिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
3: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
2: अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर श्री देसाई ने कहा कि बातचीत तकनीकी स्तर पर पहुंच गई है। दोनों पक्ष उत्पाद वर्गीकरण और शुल्क नियमों सहित विभिन्न विवरणों पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। भारत ने विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि पर गठित मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह से ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए इस निर्णय को कानूनी रूप

0: से अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, ना ही उसकी कार्यवाही में भाग लिया और ना ही उसके निर्णयों से बाध्य होगा। भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जलसंधि अभी भी स्थगित है। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT के 66वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है। श्री जोशी ने NCERT को भारत की स्कूली शिक्षा की आधारशिला और युवा मस्तिष्कों की पीढ़ियों को संवारने वाला एक अहम संस्थान बताया। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंपों का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। 3,925 लोग अब भी लापता हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद में खेले गए मैच में सिंगाम्योम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will address 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO Summit is being held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi, in his address to the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit, will underline India's priorities in the areas of security, connectivity and opportunity. India has consistently opposed double standards in the fight against terrorism, separatism and extremism. India believes that greater connectivity among member countries is essential for peace and prosperity in the region. At the same time, connectivity projects must respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. India has also been emphasizing the need to create new opportunities for the youth of member countries and promote the startup ecosystem. Vikalp Shukla, Akashvani News, Bishkek.
1: India's real GDP has recorded a growth rate of 7.8% during the first quarter of current financial year compared to 6.9% during the same period previous year. Ministry of Statistics and Program Implementation released the quarterly estimates of GDP for the first quarter from April to June of the current financial year. It said Indian economy has sustained growth momentum despite global headwinds. The nominal GDP has also registered 10.3% growth during the first quarter of the current financial year. Prime Minister Narendra Modi has said that India's economic growth of 7.8% is a reflection of hard work and collective resolve of 140 crore citizens. Sharing a video in a social media post today, Mr. Modi said, India is progressing at a fast pace despite global problems like ongoing wars and instability since the COVID-19 pandemic. He said, in order to maintain this growth, it is important to become Atmanirbhar Bharat. The Prime Minister urged the citizens to adopt Swadeshi, promote vocal for local and support Made in India products. Mr. Modi also urged the citizens to restrict foreign travel, avoid planning weddings in foreign countries and not buy gold if not necessary. Mr. Modi expressed confidence that if all the citizens adopt the practice of Swadeshi, the vision of Viksit Bharat will be achieved on the 100 years of independence. India has strongly rejected a ruling by the World Bank Constituted Court of Arbitration over the Indus Waters Treaty, rejecting the tribunal's authority and calling its decision legally invalid. In a social media post, the Ministry of External Affairs said India has never recognized the arbitration panel, did not participate in its proceedings, and would not be bound by its rulings. New Delhi also

0: reiterated that the Indus Waters Treaty remains in abeyance. Rescue teams in Nepal are racing against time to reach more than 600 workers believed to be trapped in mud-filled tunnels at the Trishuli 3A hydropower site. Crews are using explosives, heavy machinery and air pumps to clear the tunnels and search for survivors. According to Nepal's Disaster Management Authority, 939 people have died and 3,925 are missing, including 592 foreign nationals. So far, 279 people have been rescued from hydropower sites, while more than 11,000 people have been rescued across the country. The month-long population enumeration in snowbound areas of Jammu and Kashmir will begin today and will continue till September 30th, with enumerators set to physically visit households to record details in 16 districts of the Union Territory. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Chhattisgarh today. Heavy rainfall is also expected over Himachal Pradesh, Bihar, eastern Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, Uttarakhand and parts of northeast India for the day. Lionel Messi has announced his retirement from international football, bringing an end to a 21-year Argentine career that included a World Cup triumph, two Copa America titles and a record 207 appearances for his country. The 39-year-old revealed the decision in a social media post. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक अमेरिका ने भारत को गतिशील मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया नेपाल में बचाव दल ने पनबिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया 21 साल का शानदार करियर समाप्त शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 26वां वार्षिक शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन का विषय है एससीओ के 25 वर्ष शांति विकास और समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ना हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत चीन और रूस सहित 10 देश शामिल हैं
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे भारत आतंकवाद अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार बिश्केक
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा
3: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता रहा है
3: यूक्रेन के विषय पर

0: हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही है। ये भारतीय

0: 7.8% रही है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
2: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है, और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
0: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
3: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
4: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेज प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
5: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, DNA परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम DNA पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप और 2 कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही उनके 21 साल के शानदार करियर का समापन हो गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 वर्ष का शानदार करियर समाप्त। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ஒலித்த பாடலுடன் சுகமான ராகங்கள் நிறைவு பெற்றது. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 26वां वार्षिक शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं. ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है. सम्मेलन का विषय है एससीओ के 25 वर्ष शांति, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ना. शंघाई सहयोग संगठन में भारत, चीन और रूस सहित 10 देश शामिल हैं. भारत वर्ष 2017 से संगठन का पूर्ण सदस्य है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की. श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा. श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है. उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा. राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही. ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में GDP वृद्धि दर 6.9% थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है. आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है.
2: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए. एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है. दुनिया युद्ध में डूबी हुई है. चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है. विश्व संकटों से घिरा हुआ है. सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है. 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही. उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा.
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया. अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है. अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है. व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं. भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर श्री देसाई ने कहा कि बातचीत तकनीकी स्तर पर पहुंच गई है. दोनों पक्ष उत्पाद वर्गीकरण और शुल्क नियमों सहित विभिन्न विवरणों पर चर्चा कर रहे हैं. भारत ने विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि पर गठित मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह से ठुकरा दिया है. भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए इस निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, न ही उसकी कार्रवाई में भाग लिया और न ही उसके निर्णयों से बाध्य होगा. भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है. नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं. बचाव दल सुरंगों को साफ करने और

0: जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंपों का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन से मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। 3,925 लोग अब भी लापता हैं। प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में 7 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार इन परिसरों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सहायक के चंद्राकर का आवास भी शामिल है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश हो सकती है। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की है। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The 26th annual summit of the Shanghai Cooperation Organization SCO begins today in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. The summit has been held to mark the 25th anniversary of the Shanghai Cooperation Organization. The theme of this year's SCO summit is 25 years of the SCO, together towards sustainable peace, development and prosperity. The SCO has 10 member countries including India, China and Russia. India has been a full member of the SCO since 2017. Prime Minister Narendra Modi will address the SCO summit today. We have more from a correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi, in his address to the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit, will underline India's priorities in the areas of security, connectivity and opportunity. India has consistently opposed double standards in the fight against terrorism, separatism and extremism. India believes that greater connectivity among member countries is essential for peace and prosperity in the region. At the same time, connectivity projects must respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. India has also been emphasizing the need to create new opportunities for the youth of member countries and promote the startup ecosystem. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
1: Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi today arrived at the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit venue in Bishkek, where he received a warm welcome. PM Modi and Chinese President Xi Jinping shook hands and interacted while walking together and were seen having a conversation after they posed for a group photograph with other leaders. India's real GDP has recorded a growth rate of 7.8% in the first quarter of the current financial year, compared to 6.9% during the same period the previous year. Prime Minister Narendra Modi has said that India's economic growth of 7.8% is a reflection of hard work and collective resolve of 140 crore citizens. Sharing a video in a social media post today, Mr. Modi said that India is progressing at a fast pace despite global problems like ongoing wars and instability since the COVID-19 pandemic.
3: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: Rescue teams in Nepal are racing against time to reach more than 600 workers believed to be trapped in mud-filled tunnels at the Trishuli 3A hydropower site. Crews are using explosives, heavy machinery and air pumps to clear the tunnels and search for survivors. According to Nepal's Disaster Management Authority, 939 people have died and 3,925 are missing, including 592 foreign nationals. So far, 279 people have been rescued from hydropower sites, while more than 11,000 people have been rescued across the country. Mizoram is gearing up for the winter festival as part of the state government's efforts to establish the state as the winter capital of India, officials said. The organizing committee for the festival met here under the chairmanship of Chief Minister Lal Duhoma to discuss preparations for the event. Addressing

नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और

0: आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
2: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फॉरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल SSB की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय SSB की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। SSB के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट

0: उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने एसएसबी की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50 हजार करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
2: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ एआई समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये एआईआर एफएम गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। एफएम गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में एफएम गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। एफएम गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई एफएम गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार

0: कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्सपर्ट एट AIR News हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले दो दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूडा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 44 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सबालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी FM गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: நேரம் 2:30. ஆகாஷ்வாணி நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்டு.

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் திரைகாணம் நிறைவு பெறுகின்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवादी गतिविधियों को मिलने वाली आर्थिक मदद, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना हो चुके हैं। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने गुजरात के भावनगर पारा यार्ड पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 125 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि परियोजना से भावनगर पारा में अतिरिक्त परिचालन क्षमता सृजित होगी, जिससे यात्री सुविधाओं में सुधार होगा।

0: और रेल अवसंरचना को मजबूती मिलेगी। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा इस महीने की 15 तारीख से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। हालांकि पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में आपूर्ति व्यवस्था को देखते हुए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए ये सीमा 4000 क्विंटल ही बनी रहेगी। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी और कीमतें काबू में रहेंगी। सरकार ने देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। इस पहल के तहत करीब 3400 किसानों को सीधे 210 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार में प्याज आते ही कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में दाम और कम होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। नई दिल्ली में श्री प्रसाद ने कहा कि वैश्विक संकटों, संघर्षों और आर्थिक चुनौतियों के बीच ये आंकड़े दर्शाते हैं कि बाकी दुनिया के मुकाबले भारत किस स्थान पर है। नेपाल में बचाव दल त्रिशुली 3A पनबिजली परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंपों का उपयोग कर रहे हैं। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 939 लोगों की मौत हो चुकी है और 3925 लोग लापता हैं। आकाशवाणी FM गोल्ड की आज 25वीं वर्षगांठ है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization SCO to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. The leaders of the member states also signed the Bishkek declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan today. Alongside the 25th anniversary Bishkek declaration, member states signed a wider package of resolutions aimed at improving institutional frameworks and countering modern security threats. More from our correspondent.
2: Addressing the SCO summit, Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. He said, "Wars and conflicts are not a solution to any problem, and all disputes should be resolved through dialogue and diplomacy." The Prime Minister said, "India supports all efforts that connect markets, facilitate trade, and open new avenues for development." However, he stressed that such efforts must fully respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. Addressing the summit, Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
1: Prime Minister Modi has since left for New Delhi. The Supreme Court today ordered the closure of FIRs registered across the country over student protests related to the NEET paper leak issue held from the 20th to the 25th of July. The court directed that the cases should not be pursued or investigated.

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: website. Kindly go on to www.cacp.da.gov.in. Indo-Tibetan Border Police Force, ITBP, Ministry of Home Affairs, Government of India, has invited applications from Indian citizens for 3 posts of Deputy Commandant, Accounts Officer on deputation basis, in pay level 11, along with admissible central government allowances. The detailed advertisement, eligibility criteria, qualifications and application form available on the official ITBP website. Applications must be forwarded through proper channel to the Senior Administrative Officer Personnel, Directorate General, ITBP, Block 2, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi, 11003. The last date for receipt of applications is within 2 months from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Complete applications, advance copies and applications received after the due date will not be entertained. For details, kindly look up the website at www.itbppolice.nic.in. Vardhaman Mahavir Medical College, VMMC and Safdarjung Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, has invited applications for filling up 2 posts on deputation basis, including deputation with short-term contract. The vacancies comprise 1 post of Deputy Director Accounts in pay level 11 and 1 post of Technical Supervisor Central Sterile Service Department in pay level 6. The recruitment is by deputation including short-term contract. Detailed information regarding eligibility, qualifications, experience, age limit, application forms and required documents are available on the official Safdarjung Hospital website. Applications along with requisite documents must be submitted in the prescribed format to Diary Section near Gate No. 2, VMMC and Safdarjung Hospital, New Delhi on working days Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. and on Saturdays from 9 a.m. to 1 p.m. The last date for submission is within 30 days from the date of issue publication of this advertisement in the Employment News. For details, do look up the website at www.vmmc-sjh.mohfw.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार. नमस्कार. रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा. आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासनिक तकनीकी पुस्तकालय प्रणाली विश्लेषक निर्माण विभाग राजभाषा एवं खेल संवर्ग के पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है. विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट पर जिसका पता है www.iitbhu.ac.in तथा iitbhu.ac.in/recruitment. दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन. प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट. विस्तृत जानकारी के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dtu.ac.in. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में आवश्यकता है इन पदों को भरने की. सहायक प्रशासन अधिकारी पदों की संख्या 2, निजी सचिव 5, सतर्कता प्रकोष्ठ सिविल हेतु सहायक अभियंता 1, प्रबंधक पर्यवेक्षक गैस अधिकारी 1, वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी 1 पद, परिवहन पर्यवेक्षक 1 पद, सहायक लेखा अधिकारी 2 पद, सहायक भंडार अधिकारी 3 पद, तकनीकी सहायक 16 पद, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 14 पद, व्यक्तिगत सहायक 7 पद, फार्मासिस्ट ग्रेड 1 11 पद, चिकित्सा अभिलेख अधिकारी 4 पद, स्वच्छता अधिकारी 3 पद, वरिष्ठ फार्मास

0: सिस्ट 3 पद, सहायक सुरक्षा अधिकारी 1 पद और धुलाई प्रबंधक 1 पद। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार देख सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल की वेबसाइट, जिसका पता है www.aimsbhopal.edu.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में भरे जाने हैं ये पद, चिकित्सा अधीक्षक, रजिस्ट्रार, कार्यकारी अभियंता सिविल, कार्यकारी अभियंता इलेक्ट्रिकल, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक और उच्च श्रेणी लिपिक। आवेदन पत्र, पात्रता मानदंड, वांछनीय योग्यता, अनुभव और संबंधित विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.aimsgorakhpur.edu.in। कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखाकार के 6 संवर्ग बाह्य पदों को प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। इस अवधि को वार्षिक आधार पर अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी और नियम तथा शर्तों को देखने के लिए देखिए कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट www.ssc.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आप तक लाएंगे हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और ले चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आज शानदार गजलकार और गीतकार दुष्यंत कुमार की जयंती है, तो उनकी दो पंक्तियों से कार्यक्रम की शुरुआत करें। इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, या इसमें रोशनी का करो इंतजाम और, आंधी में सिर्फ हम ही उखड़ कर नहीं गिरे, हमसे जुड़ा हुआ था कोई एक नाम और। यानी कि जिंदगी में हर एक के मुश्किलें हैं, कहीं किसी के साथ किसी तरह की दिक्कतें हैं, कोई संघर्ष कर रहा है, लेकिन हर एक इस जद्दोजहद में है। और आगे के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि डेडलाइन में आज हम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड की सिल्वर जुबली जो मनाई जा रही है इस पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो आंकड़े विकास दर के लिए दिए हैं उस पर हम बात करेंगे। बहुत कुछ होगा आधे घंटे में। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार जागृति। जागृति, अ न्यू मंथ, new beginning, new mindset, new intentions, new results, an opportunity to start afresh in many ways. The month of September is here, and the first week of September is dedicated to nutritional week in our country. In Indian homes, Jagriti, eating healthy is synonymous with eating home-cooked food. However, even home-cooked meals can fall short of certain essential nutrients if the diet is not properly balanced, which can lead to nutritional deficiencies and increase the risk of health problems over time. To help prevent nutritional deficiencies and raise awareness about the importance of having a balanced diet, National Nutrition Week is observed every year in India from the 1st to the 7th of September. The observance explores

0: The importance of a healthy diet, essential nutrients and healthy eating habits for maintaining a good health. Good nutrition is the foundation of physical and mental health, providing the essential fuel and building blocks our body needs to function properly, isn't it, Jagriti?
1: बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी थाली जो है बहुत तमाम तरह के व्यंजनों से भरी हो, बल्कि जरूरी ये है कि जो आप खा रहे हैं उनमें आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलें, उसमें गुड फैट्स होने चाहिए, है ना, कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन जिसकी कि हर इंडियन में डेफिशिएंसी देखी जाती है, विटामिन्स होने चाहिए. तो न्यूट्रिशनल जो वीक है इसमें खासकर अपनी न्यूट्रिशंस का ध्यान रखें और सरकार भी इसके लिए अभियान चला रही है.
0: ऑफ कोर्स बेटर न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू इम्प्रूव्ड इन्फेंट चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ, स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम, सेफर प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, लोअर रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज सच एज डायबिटीज एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एंड ऑफ कोर्स लॉन्जिविटी. सो टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन इन योर डेली फूड, फ्रेंड्स. So Jagriti, in the coming days also, we will be discussing on it more in our different news magazines. But right now, let's apprise you all with the latest headlines at this hour of the day. Prime Minister Narendra Modi calls upon SCO member countries to work unitedly to dismantle entire terror ecosystem. Addresses summit at Bishkek in Kyrgyzstan. Prime Minister asserts no place for double standards in combating the menace. Prime Minister Modi hails 7.8% economic growth as a reflection of hard work of 140 crore Indians, appeals to citizens to avoid unnecessary foreign travel and gold purchases.
1: भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए.
0: In Nepal, flood death toll reaches 987 following widespread devastation.
1: आकाशवाणी FM गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है.
0: IMD shows red alert for Chhattisgarh. Extremely heavy rainfall expected over parts of Jharkhand, Odisha and Northeast India till tomorrow. And Jagriti, now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about local for vocal. Jagriti, India is growing and growing fast, even as the global economy continues to navigate a turbulent phase. India's real GDP has recorded a growth rate of 7.8% during the first quarter of the current financial year, compared to 6.9% during the same period previous year.
1: जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7.8% की हालिया आर्थिक विकास दर को सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत और सामूहिक संकल्प का प्रतिबिंब बताया.
2: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई. 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया. देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए. एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है. दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है. 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है.
0: Jagriti, just think about the backdrop these days. Wars, geopolitical instability and the economic disruptions that have continued since the COVID-19 pandemic.
1: जी, और फिर भी भारत मजबूत रफ्तार बनाए रखने में कामयाब रहा है.
0: सो द बिग क्वेश्चन इज, व्हाट इज पावरिंग इंडियाज राइज व्हेन द वर्ल्ड इज फेसिंग सच स्ट्रॉन्ग हेडविंड्स?
1: प्रधानमंत्री का जवाब साफ है, आत्मनिर्भरता. श्री मोदी ने एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है और नागरिकों से स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल बनने और भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने की अपील की है.
0: But importantly, he says this idea goes much beyond simply buying an earthen lamp during the festive season.
1: इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बने उत्पादों पर गर्व करना और उनके लिए मांग पैदा करना है, घरेलू कारोबार को मजबूत करना है और ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना है जो बाहरी दुनिया पर कम से कम निर्भर हो.
0: एंड देयर इज अनदर स्ट्राइकिंग पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स अपील. ही हैज अर्ज्ड सिटीजंस टू थिंक केयरफुली अबाउट द स्पेंडिंग, व्हाटएवर वी स्पेंड अब्रॉड, इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्टिंग अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल, अवॉइडिंग

0: destination weddings overseas and even refraining from buying gold when it isn't necessary.
1: हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है. स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए. शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए. मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए.
2: बात सीधी सी है, अगर भारतीय पैसा भारत के अंदर ही रहे तो इससे भारतीय उद्यमों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है.
0: एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द लार्जर पिक्चर. इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज अनफोल्डिंग एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज डीलिंग विद अनसर्टेनिटी.
2: अब चुनौती सिर्फ विकास करने की नहीं है बल्कि उस विकास को ज्यादा मजबूत, आत्मनिर्भर और भारत की अपनी क्षमताओं पर गहराई से आधारित बनाने की भी है.
0: बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज इज अल्टीमेटली अबाउट टर्निंग इकोनॉमिक ग्रोथ इनटू अ कलेक्टिव नेशनल एफर्ट.
2: हम जो सामान खरीदते हैं, जिन बिजनेस को हम सपोर्ट करते हैं और ग्राहक के तौर पर जो फैसले लेते हैं, इन सब के जरिए वोकल फॉर लोकल को आत्मनिर्भर भारत की ओर एक रास्ते के तौर पर पेश किया जा रहा है.
1: हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे. हमारी युवा पीढ़ी के सपनों को हम आज अपने परिश्रम से साकार करके रहेंगे और इसलिए आइए देशवासियों, हम पुरुषार्थ में कोई कमी न रखें. हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति आज एकजुट होकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है. आइए खुशियां भी मनाइए, संकल्प कीजिए और संकल्प को सिद्ध करने के लिए मेरे साथ चल पड़िए.
0: वोकल फॉर लोकल, इट्स मोर देन अ स्लोगन, इट्स अ चॉइस दैट कैन डायरेक्टली शेप इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर. Vocal for Local is a mission of the country to be self-sufficient in goods production, self-reliance and supply, and to engage in self-consumption of items produced.
2: ये घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का लाभ उठाने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर इस जोरदार अपील जो प्रधानमंत्री ने की है, इसके असर को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है. जब हम भारत में बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चुनते हैं तो हम अपने जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कारीगर हैं, किसान हैं और जो MSME जो हमारा बिजनेस लोग कर रहे हैं और उस अदर जो उद्यमी हैं उनका हम समर्थन करते हैं.
0: एंड दैट स्पेंडिंग क्रिएट्स अ लार्जर साइकिल, मोर डिमांड, मोर प्रोडक्शन, मोर जॉब्स एंड अ स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक इकोनॉमी.
2: और अनुजा, ऐसे समय में जब वैश्विक अनिश्चितताएं अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा कर रही हैं, भारत में घरेलू स्तर पर उत्पादन को मजबूत करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है.
0: एंड जागृति, दैट इज द लार्जर आइडिया बिहाइंड आत्मनिर्भर भारत, अ नेशन दैट बिलीव्स इन इट्स ओन कैपेबिलिटीज, टेक्स प्राइड इन व्हाट इट मेक्स एंड टर्न्स एवरी कंज्यूमर चॉइस इनटू अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर इंडिया.
2: जी, और इससे कहा जा सकता है कि जो आज का वोकल फॉर लोकल का जो नारा है वो कल के आत्मनिर्भर भारत की नींव है. और अब डेटलाइन के दूसरे सेगमेंट की बात कर लेते हैं. आज आकाशवाणी FM गोल्ड अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है. ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर यानी कि आज ही के दिन शुरू हुआ था. ये EIR FM गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है. FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं. तो आइए इस पर सुन लेते हैं हमें ये रिपोर्ट.
3: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा. जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा. पिछले कुछ वर्षों में FM गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है. इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं. साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं. FM गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं. वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे

0: भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई एफएम गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले दो दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने राजधानी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से ही।
2: राइट जागृति, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स इन न्यू दिल्ली टुडे सेड दैट द नेशनल आई बैंक व्हिच इज हाउस्ड अंडर डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थाल्मिक साइंसेज हैज रिकॉर्डेड मोर देन 2,200 कॉर्निया डोनेशंस इन लास्ट ईयर विद अराउंड 82% of the donated corneas are being utilized. Talking to Akashvani News on the occasion of the 41st National Eye Donation Fortnight, Chief of Dr. RP Center, Dr. Radhika Tandon said that the center's utilization rate is considerably higher than the national average of around 50%. Attributing to its status as a tertiary referral center, modern practices and treatment of patients according to their specific diseases.
3: Almost 1700 patients को कॉर्निया ट्रांसप्लांट मिला है। परसेंटेज देखे तो ये देश का सबसे ज्यादा है, क्योंकि नेशनल एवरेज है अबाउट 50% यूटिलाइजेशन। तो क्योंकि हम बहुत टर्शरी रेफरल सेंटर है और हम आधुनिक तरीके से ऑपरेशन करते हैं, प्लस हमारे पास फुल रेंज ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको जैसे कॉर्निया हो उनके बीमारी के अनुसार वो ट्रांसप्लांट होता है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई वी हैव अ हाई यूटिलाइजेशन रेट। हम चाहते हैं कि पब्लिक में ये मैसेज जाए कि आई डोनेशन एक अच्छा काम है, ये मृत्यु के पश्चात ही होता है, लिविंग पर्सन से नहीं लिया जाता। कॉर्निया हेल्दी रहता है अप टू 6 to 8 आवर्स आफ्टर डेथ, तो 6 से 8 घंटे के अंदर अगर नेत्रदान किया जाए तो ये कॉर्निया किसी और का काम आ सकता है।
1: और दिल्ली से चलते हैं अब छत्रपति संभाजीनगर, जहां पर चिया सीड्स की जो खेती है वो किसानों के लिए लाभदायी किस तरह से सिद्ध हो रही है। अनुजा, आजकल चिया सीड्स जो है बहुत ट्रेंड में है, बहुत हेल्दी चीज़ है जिसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में अगर शामिल करें तो ये कहा जाता है कि आपका जो पाचन तंत्र है इसमें सुधार करता है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये तमाम तरह की जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज जिन्हें कह सकते हैं इसमें भी वो हमें फ़ायदेमंद रहता है और कहीं ना कहीं वेट लॉस में काफी फायदेमंद है।
2: ऑल गुड थिंग्स अबाउट चिया सीड्स दीस डेज।
1: बिल्कुल, हेल्थ के लिए अच्छा है ही, इसके साथ ही ये फार्मर्स के लिए भी बहुत बेहतर साबित हो रहा है। किस तरह से, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
4: परंपरागत खेती से हटकर नए फसलों का उत्पादन किसानों की आय बढ़ाने के लिए सफल सिद्ध हुआ है। महाराष्ट्र के जालना जिले की बदनापुर तहसील के निवासी मनोज एखंडे ने चिया सीड्स की खेती कर आर्थिक प्रगति की यात्रा का आरंभ किया है। अपनी इस यात्रा की जानकारी मनोज ने आकाशवाणी के साथ साझा की।
5: पहले मैं पारंपरिक तरीके से खेती करता था, मैं कपास और गेहूं की फसल उगाता था जिससे मुझे सालाना लगभग 70,000 रुपए की आमदनी होती थी। मैंने चिया की खेती शुरू की। मैं पिछले 4 वर्ष प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। मैंने प्याज बुवाई मशीन की मदद से चिया की बुवाई की। बुवाई के लगभग 1.5 महीने बाद मैंने जीवामृत और गोकुंभामृत का उपयोग किया। इससे मुझे प्रति एकड़ लगभग 4 क्विंटल चिया उत्पादन मिला। उस समय वाशिम मंडी में चिया का भाव लगभग 18,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल था। तब मैंने सोचा कि चिया से कुछ अलग और बेहतर किया जाए, इसलिए मैंने खुद चिया की क्लीनिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग शुरू की। तरह मेरी आमदनी बढ़कर लगभग 2 लाख रुपए प्रति एकड़ हो गई। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि चिया की खेती जरूर करें।
4: दूसरे किसान भी मनोज एखंडे का अनुकरण करें तो उनकी प्रगति के मार्ग भी विकसित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
2: And Jagriti, in this digital age, cyber crime has also increased a lot. So awareness is the most powerful weapon against cyber crimes these days. With this objective, the Chhattisgarh police has launched a statewide cyber Jagriti Abhiyan cyber awareness campaign. Spanning 7 phases from 15th of August to 2nd of October, this campaign aims to raise awareness about cybersecurity among all the sections of society. We have more on this from our correspondent.
6: साइबर

0: अपराध का खतरा किसी एक वर्ग या उम्र तक सीमित नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया जा रहा साइबर जागृति अभियान भी प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पहले चरण में स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों को अनजान लिंक, संदिग्ध ऐप और सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने से बचने की सलाह दी गई। दूसरे चरण में बैंक और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लोगों को UPI, OTP, QR कोड और ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ी धोखाधड़ी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आगे के चरणों में वरिष्ठ नागरिकों को फर्जी कॉल और डिजिटल अरेस्ट, महिलाओं को स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की सुरक्षा तथा युवाओं को फर्जी नौकरी और ऑनलाइन जॉब ऑफर के नाम पर होने वाली ठगी से बचने के उपाय बताए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षित डिजिटल संसाधनों के इस्तेमाल की जानकारी भी दी जाएगी। इस अभियान के अंतिम चरण में गांवों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में साइबर चौपाल लगाई जाएगी। अभियान की खास पहल है साइबर जागृति की एक सेल्फी। QR कोड स्कैन कर विशेष सेल्फी फ्रेम में तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर साझा की जा सकती है, यानी संदेश साफ है, साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस के साथ हर नागरिक की जागरूकता जरूरी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: और अब चलते हैं भुज की ओर। विशाल रण प्रदेश, लंबा समुद्री तट, बन्नी के घास के मैदानों और मैंग्रोव जैसी अद्भुत जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध कच्छ जिले की धरती अब हरित क्रांति की मिसाल बन रही है। कच्छ को हरा भरा बनाने के लिए सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा किए जा रहे भागीरथी प्रयास जमीनी स्तर पर अपना व्यापक रंग दिखा रहे हैं, जिसने पूरे देश का ध्यान भी खींचा है। आइए सुनते हैं हमारे भुज संवाददाता परेश मारू की रिपोर्ट।
2: पर्यावरण संरक्षण की मुहिम के तहत गत वर्ष सामाजिक वानिकी विभाग ने 10 तालुकों में 165.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 381,331 पौधे रोपे। साथ ही घने वनों का बढ़ावा देने के लिए 9 तालुकों में जापानी मियावाकी पद्धति अपनाकर 19 हेक्टेयर में 17 वन कवच का सफल निर्माण किया गया। इस अभियान की गति को जारी रखते हुए चालू वर्ष में 10 तालुकों के 158 हेक्टेयर में 381,663 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा 8 तालुकों में मियावाकी पद्धति से 22 हेक्टेयर में 14 नए वन कवच तैयार हो रहे हैं। वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाने के लिए इस वर्ष 48,85,000 पौधों का वितरण भी किया जा रहा है। इस सघन प्रयासों के परिणाम सरकारी आंकड़ों में भी स्पष्ट है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कच्छ जिले के ग्रीन कवर में 237 वर्ग किलोमीटर की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो पूरे गुजरात में सर्वाधिक है। वर्ष 2025 के सर्वेक्षण के मुताबिक वन क्षेत्र से बाहर भी कच्छ में 3,84,56,938 पेड़ों का अनुमान है, जो विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल ही में कच्छ के दयापर गांव में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री त्रिकमबाई छांगा ने 77वें जिला स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों में ऐसे आयोजनों से नागरिकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हर नागरिक से एक पौधा लगाने की अपील की। परिक्रमा के लिए भुज से परेश मारू।
1: और अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर और जानते हैं वहां की हलचल। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में एरिना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसेरियो को पराजित किया है। सबालेंका का अगला मुकाबला अब रूस की पोलिना यात्सेकुन से होगा।
3: In the business news today, benchmark domestic equity indices ended marginally lower. The Sensex declined 13 points to close at 76,944. The Nifty dropped 25 points to settle at 24,056. And for more updates about the market activities, tune in to Akashwani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
1: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: We bring you the story of legendary Tamil fighter Pulidevan, who was born on this day in 1715. He was one of the first Indians to resist the British imperialism in the country. He was one of the 77 Poligars or the local chieftains in the Tamil region during the time with him yielding the power in the locality of Nel Kattum Sevval of the present-day Tirunelveli district of Tamil Nadu.
5: The system of governance through the Palayams

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट गायन शैली के लिए प्रसिद्ध तारापद चक्रवर्ती की आज पुण्यतिथि है। ख्याल और ठुमरी के साथ रागों की गहरी और विस्तार

पूर्ण प्रस्तुति उनकी विशेष पहचान रही। उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। संगीत के साथ उनका रिश्ता आकाशवाणी से भी जुड़ा रहा। 1930 के दशक में उन्होंने कलकत्ता रेडियो केंद्र में संगीतकार के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर अपनी गायकी से अलग पहचान बनाई।

0: इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, एक खंडहर के हृदय सी एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। आम आदमी की पीड़ा और सामाजिक व्यवस्थाओं की विसंगतियों को साहित्य के माध्यम से प्रकट करने वाले सुप्रसिद्ध गजलकार और गीतकार दुष्यंत कुमार की आज जयंती है। साये में धूप से प्रस्तुत इन पंक्तियों में जीवन के संघर्ष, उम्मीद और अदम्य जीवट का भाव प्रकट होता है।
1: And today is also the birth anniversary of Dr. Rahi Masoom Raza, celebrated as a legendary poet, novelist and screenwriter who wrote timeless works in both Hindi and Urdu. Raza's career in Hindi films began with the romantic drama Milli in 1975, directed by Hrishikesh Mukherjee, and his dialogues in the film were praised, marking the beginning of his career in the Hindi film industry. Here we have selected a dialogue from the movie Milli.
2: कि मैं शादी करने जा रहा हूं। सब कुछ इतनी जल्दी तय हो गया कि तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। आज समझो बात तय हो गई, परसों शादी है। दरअसल अकेले रहते रहते मैं बोर हो गया था, तो सोचा घर बसा डालूं।
3: कौन है वो?
2: है कोई?
0: भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया। देश में निकला होगा चांद उनकी बेहद लोकप्रिय नज्म है, जिसे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने पहली बार गाया था। ये चलते चलते सुनते हैं। और इसके साथ ही अनुमति दीजिए जागृति और अनुजा को। नमस्कार।
4: नेरम मालै 5 मणि आकाशवाणी நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட் அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் ஆர் லாவண்யா அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம். பரூர் எம்கே அனந்தலட்சுமி அவர்கள் வயலின், நாகை எஸ் நாராயணன் அவர்கள் மிருதங்கம். நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக கணபதே மகாமதே, கல்யாணி ராகம், ரூபக தாளம், முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் கிருத்தி.

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் நேயர்கள் இதுவரை ஆர் லாவண்யா அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். பரூர் எம் கே அனந்தலட்சுமி அவர்கள் வயலின், நாகை எஸ் நாராயணன் அவர்கள் மிருதங்கம். இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
3: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की।

0: रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं सरकार ने कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में MA की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: நேரம் 6:05. ஆகாஷ்வாணி நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட்.

0: 12:40 மெல்லிசை. ஒன்று பத்துக்கு இசை மலர். சுப்புலட்சுமி சுவாமிநாதன் அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம். டாக்டர் உஷா ராஜகோபாலன் அவர்கள் வயலின், திருச்சூர் சி நரேந்திரன் அவர்கள் மிருதங்கம். 2:30 லய விநியாசம். காரணி மண்டபம் வி முருகன், சின்ன கடம்பூர் மோட்டூர் வி வடிவேல் ஆகியோரின் தவிலிசையின் முதற் பகுதி இடம்பெறும். நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறுவது கண்டஜாதி திருப்பட தாளம். 2:45 திரைகாணம். 3:00 மதுரம் மதுரம் ஈசமயம். 4:10 தேநீர் நேரம். 4:20 எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ். 4:25 ரோஸ்கர் சமாச்சார். 4:30 பரிக்ரமா செய்தி தொகுப்பு டெல்லி அஞ்சல். நாளை மாலை 5:00 அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் லக்ஷ்மி ராமசுப்பிரமணியன் அவர்களின் வீண இசை கேட்கலாம். நெல்லை ஏ பாலாஜி அவர்கள் மிருதங்கம், பிரசாந்த் மாத்ருபூதம் அவர்கள் கஞ்சிரா. 6:05 நிகழ்ச்சி நிரல். 6:10 விஸ்லேஷன். 6:30 11:10 மார்க்கெட் மந்த்ரா. 7:10 இளைய பாரதம், நம்பிக்கையுடன் ஓர் நேர்காணல், ஜே தினேஷ்ராஜ் அவர்களுடன் நேர்முகம் இடம்பெறும். சொல்லாத செய்திகள், சொல்பவர் எஸ் தர்ஷினி, கற்பனை கூறும் நிஜங்கள், வழங்குபவர் ஏ அபர்ணா. 7:45 திரைப்பட பாடல். 7:50 செய்தி கதம்பம். நேயர்கள், இதுவரை இந்த அலைவரிசையில் இன்றும் நாளையும் இடம்பெற உள்ள நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்பினை கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்கிறது விஸ்லேஷன் டெல்லி அஞ்சல்.
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் சேவா பிரபாக் கி பிரஸ்துதி விஸ்லேஷன்.
2: आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं प्राची प्रिया। आज के कार्यक्रम का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य एशिया दौरा, प्रमुख उपलब्धियां और रणनीतिक महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रहे। दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री ने 29 और 30 अगस्त को ताशकंद की राजकीय यात्रा की। इसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट में हिस्सा लिया। ताशकंद में भारत और उज्बेकिस्तान के संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए स्तर पर ले जाने पर सहमति बनी, जबकि बिश्केक में प्रधानमंत्री ने रूस, ईरान, किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें की। तो श्रोताओं, इस पूरे दौरे की प्रमुख उपलब्धियां क्या रहीं? उज्बेकिस्तान के साथ संबंधों में क्या नया जुड़ा? बिश्केक में हुई बैठकों का क्या महत्व रहा? और बदलती वैश्विक व्यवस्था में ये दौरा भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं पहली रिपोर्ट से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त को ताशकंद से अपने मध्य एशिया दौरे की शुरुआत की। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर हुई प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की ये चौथी यात्रा थी। 30 अगस्त को दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की व्यापक वार्ता हुई। इसमें व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और UPI, ऊर्जा, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, अंतरिक्ष और इनोवेशन सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की गई। वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम रहा, भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का निर्णय लिया। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 11 समझौतों और समझ पत्रों पर हस्ताक्षर किए। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आइए सुनते हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार को, जिन्होंने आकाशवाणी के साथ एक विशेष बातचीत में अपने विचार साझा किए।
4: द्विपक्षीय सहयोग जो है भारत का और उज्बेकिस्तान का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, वहां पर 3 बड़े बड़े भारतीय विश्वविद्यालय उज्बेकिस्तान में हमने एस्टेब्लिश किए हैं। एक तो MIT यूनिवर्सिटी की है, एक शारदा यूनिवर्सिटी की है जो है, और वहां पर हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया है। उसके बाद MIT यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है ताशकंद में, और एक और यूनिवर्सिटी संभ्राम यूनिवर्सिटी, वो भी वहां पर एस्टेब्लिश की गई है। एक तो जो द्विपक्षीय संबंध है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ये सब क्षेत्र हैं जिनमें हम उज्बेकिस्तान के साथ सहयोग कर सकते हैं।
3: राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च विदेशी सम्मान ओली डराजली दोस्त

0: और उग्रवाद से मुक्त रखने के लिए सदस्य देशों के बीच मजबूत सहयोग जरूरी है। दूसरी प्राथमिकता है कनेक्टिविटी यानी संपर्क। भारत मध्य एशिया और व्यापक यूरेशिया के साथ बेहतर कनेक्टिविटी को व्यापार और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानता है। तीसरी प्राथमिकता है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। भारत एससीओ देशों के बीच आर्थिक सहयोग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और युवाओं के लिए नए अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिवसीय यात्रा को देखते हुए इसके 3 प्रमुख आयाम सामने आते हैं। पहला, द्विपक्षीय साझेदारी। दूसरा, क्षेत्रीय कूटनीति। तीसरा, बहुपक्षीय सहयोग।
1: तो श्रोताओं, कुल मिलाकर ये यात्रा बताती है कि भारत

श्रोताओं, कुल मिलाकर ये यात्रा बताती है कि भारत मध्य एशिया को केवल भौगोलिक क्षेत्र के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और सभ्यतागत साझेदारी के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देख रहा है। इसी के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है मोहित सिंह ने। नमस्कार।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aap sabka swagat hai. स्टूडियो में आज श्रोताओं चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा कार्यक्रम में आपका
0: वार्म वेलकम.
2: जी शुक्रिया. थैंक यू.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस.
0: इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स फ्लैट. निफ्टी फॉल्स बाय 25 पॉइंट्स. ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस इंक्रीज नियरली 15% टू ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपीज इन ऑगस्ट दिस ईयर. And global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज सेंसेक्स सपाट बंद हुआ. वहीं निफ्टी 25 अंक नीचे आया. कुल जीएसटी संग्रह अगस्त माह में लगभग 15% बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया. और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े.

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए श्रोताओं अब जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 13 अंक फिसलकर 76,944 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 25 अंक लुढ़ककर 24,056 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिडकैप 100 लगभग 1.5%, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले भू राजनीतिक तनाव के बीच बाजार गिरावट के साथ खुले, लेकिन शुरुआती नुकसान से उबरकर सकारात्मक दायरे में आ गए। हालांकि सत्र के दूसरे भाग में बाजार ने बढ़त गंवा दी, साथ ही निफ्टी वायदा और विकल्प की साप्ताहिक समाप्ति ने उतार चढ़ाव को और बढ़ा दिया।
0: Benchmark domestic equity indices ended marginally lower today. The Sensex declined 13 points to close at 76,944. The Nifty dropped 25 points to settle at 24,056. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell 1.4%, while the Small-Cap 100 Index dipped over 0.2%. Earlier, the markets opened lower amid ongoing geopolitical tensions but recovered from their initial losses and turned positive. However, they failed to sustain their upward momentum during the second half of the session, with the weekly expiry of Nifty futures and options contracts adding to the volatility.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक नुकसान में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में मारुति 4.2%, वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिगो और बजाज फिनसर्व में लगभग 2.5% की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत आईटीसी 4%, एचसीएल

0: टेक 3.2% और इंफोसिस में 2.5% से अधिक का उछाल आया।
1: In the sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, auto declined 1.4%, consumer durables over 1.2%, and telecommunications as well as realty dipped over 1%. In contrast, information technology rose over 1.2%, focused IT gained 1.2%, and energy added over 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,563 companies declined, 1,760 advanced and 236 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 22 पैसे मजबूत होकर ₹94.95 पर बंद हुआ। डॉक्टर शर्मा, आज अगर हम आज की अगर चाल देखें बाजार की, तो इसे आप कैसे देखते हैं? एकदम सीधे सवाल से कार्यक्रम शुरुआत करते हैं।
2: देखिए, बाजार में जो रुख है, खास करके जो एक कंसोलिडेशन का रुख है
0: जी,
2: जो इन्वेस्टर है वो कोई मेजर मूव नहीं लेना चाहता, यहीं पे कंसोलिडेट करना चाहता है या फिर जहां पे प्रॉफिट आ रहा है उसको थोड़ा बुक करके या फिर किसी और स्टॉक में जहां पे कुछ मुनाफे के चांस बन सकते हैं तो उसमें खरीदारी करना चाहता है। तो एक कोई मूव, जैसे एक मेजर इन्वेस्टमेंट मूव
0: जी,
2: ऐसा कोई बाजार में रुख नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज जो है ग्लोबल लेवल की, एक तो क्रूड प्राइसेस जो एक मेजर अनसर्टेनिटी है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, अगर वापस एक यूएस और ईरान में एस्केलेशन आती है तो प्राइसेस जंप ले सकते हैं, जिसका सीधा असर जो है एनर्जी प्राइसेस के ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन के ऊपर जाएगा। और फिर दूसरा जो बॉन्ड यील्ड, जो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स में एक राइज है जिसकी वजह से कंपैरेटिवली जो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होती है, तो वो एक कारण है। और तीसरा जो एक अनसर्टेनिटी जो ग्लोबल लेवल पे, जो चाहे आप ग्रोथ को लेके कहें या दूसरे फैक्टर जो है, जो वॉर रिलेटेड हेडविंड्स है, और जो अभी रशिया और यूक्रेन में भी एस्केलेशन हुई है कुछ युद्ध में, तो ये सभी फैक्टर जो है मार्केट के सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज जो देखा जाए, अगस्त के महीने में काफ़ी तेज जो है इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, एफआईआईज का काफ़ी फ्लो आया है, तो कुल मिला के जो इंडिया की जो स्थिति है मार्केट की, उसको मैं एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर सेंटिमेंट कहूँगा कि इन्वेस्टर नेगेटिव भी नहीं है और वो कोई मेजर मूव भी आगे नहीं लेना चाहता because of the headwinds.
0: लेकिन हमने पिछले तीन हफ्ते में लगातार देखा कि मार्केट जो है एक तरीके से स्लाइड डाउन ही करता हमें नजर आ रहा है।
2: देखिए, उसमें क्या है, पहले इसी तरीके से मार्केट ने थोड़ी बढ़त भी ली थी, तो कुल मिला के जो रेंज है मार्केट की, जैसे मैंने पहले भी अपने इसी कार्यक्रम में बताया था कि अभी हम पिछले एक साल से लगभग देख रहे हैं कि जो मार्केट की रेंज है वो लगभग कोई 23,500 से लेके 25,500 तक, 2000 के पॉइंट, और बीच में जो मेन जो 1000 का जो मूवमेंट है जो लगभग कोई 24,000 23,000-24,500 के बीच में मार्केट जब ऊपर जाती है 24,500 के आसपास, तो एक मुनाफा वसूली आती है, क्योंकि मार्केट को कोई और आगे एक ऐसी ब्रेक थ्रू नहीं मिलती बिकॉज ऑफ द ग्लोबल हेडविंड्स। और जब मार्केट डिसेलरेट करती है तो उसको सपोर्ट मिल जाती है बिकॉज ऑफ अवर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, तो ये एक ऐसा रुख बना हुआ है। जब ऊपर जाती है तो ग्लोबल फैक्टर्स सामने आते हैं, ग्लोबल कोई जो रिस्क हैं, जो अनसर्टेनिटीज हैं, वो मार्केट के सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। और मार्केट नीचे कोई डीप करेक्शन में भी नहीं जाना चाहती बिकॉज वी आर फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारा चाहे वो कोई भी नंबर हो, हमने जीडीपी नंबर्स हों, जैसे हम पहले कई हर एक बार हम बात करते हैं कि अवर जीडीपी इज, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और दूसरे जो फंडामेंटल्स हैं बहुत स्ट्रांग है, और एक्सटर्नल सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो मार्केट उनके साथ भी ऐसा कुछ कंप्रोमाइज नहीं करके मार्केट डिसेलरेट हो या डीप करेक्शन में जाए, ऐसा भी नहीं है।
1: ओके, डॉक्टर शर्मा, यू मेंशन द जीडीपी ग्रोथ, वी हैड अ स्ट्रांग जीडीपी ग्रोथ नंबर 7.8%, even that did not translate into a clear rally today. What does this tell us about how markets are pricing growth versus risk today?
2: Yes, Mr. Lake, there is no direct correlation between the market rise and the GDP growth, because both are the different segments. Markets are on the basis of sentiments, and GDP

0: आज की तारीख में, जबकि हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकली चीज़ें जो हैं काफ़ी अस्थिर हैं, तो ऐसे में आप कौन से सेक्टर्स जो हैं वो बताना चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: देखिए, वैसे तो प्राची, जैसे मैं बताता हूँ, इंडिया इज़ अ प्रॉमिसिंग स्टोरी। इंडिया में ही इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उसमें भी पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो जो मेन ग्रोथ सेंट्रिक सेक्टर्स हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक भारत की जो विकसित भारत की जो बुनियाद है, विकसित भारत को आगे प्रमोट कर रहे हैं, सो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है। इसके अलावा जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग है, सरकार ने कितनी मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स की हैं, PLI स्कीम दी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर रिफॉर्म्स हो रही हैं, और मैन्युफैक्चरिंग हमारा डबल डिजिट में ग्रो भी कर रहा है अभी, और एक्सपोर्ट्स बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेक्टर विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर ऑल्सो वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। देन द बैंकिंग, देन एनर्जी सेक्टर, ऑल दी सेक्टर्स आर आई बिलीव वेरी स्ट्रांग पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी।
2: सो इफ वी वुड टू लुक एट द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, इफ इरानियन बैरल्स आर फर्दर स्क्वीज्ड आउट ऑफ द मार्केट, how large an incremental supply shock are we talking about, and who are the marginal buyers and sellers who would be adjusting?
1: I think the major markets, the major emerging economies are in the major limelight. Actually, they are the stakeholders in the buying and selling segment, but the monopolistic powers sometimes used and are in their vested interests, that is impacting the whole trajectory of the world natural resources, but I would say there must be a great balance between the such things. Yeah.
0: पिछले महीने वस्तु और सेवा कर के संग्रह में वृद्धि हुई और ये 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले सालाना आधार पर 14.8% की बढ़ोतरी है। वित्त मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कुल घरेलू GST राजस्व 1,37,249 करोड़ रुपए रहा, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 9.3% अधिक है। आयात से होने वाला GST संग्रह 29% बढ़कर 62,604 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे कुल मासिक संग्रह को बढ़ावा मिला। डॉक्टर शर्मा, आंकड़े तो काफी लुभावने हैं, अच्छे आए हैं, क्या ये इंगित करते हैं कि आने वाला जो तिमाही का जो परिणाम जो हो सकता है वो शायद बेहतरी की तरफ ही हो?
1: जी बिल्कुल प्राची, देखो GST एक सप्लाई साइड इंडिकेटर है जो बताता है कि जो हमारी सप्लाईज हैं वो इंटैक्ट है, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एक्सपेंड हो रही हैं, अवर प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर इंक्रीजिंग। और दूसरा डिमांड साइड फंडामेंटल्स, जैसे हमारा ऑटो सेल्स हो गया या फिर हमारी FMCG की ग्रोथ होगी, उससे पता चलता है कि हमारी डिमांड स्ट्रांग है। तो ये इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि ये जो महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दीज आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। हमें अगस्त तक का तो पता चल ही रहा है कि GST नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग। अभी एक्सपोर्ट का डेटा आएगा, उसमें भी हम पॉजिटिव हैं कि बहुत अच्छा एक्सपोर्ट नंबर भी आएगा हमारा, जैसे पहले 13% का भी हो चुका है। और इसके अलावा जो IIP नंबर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि 6.7% पे IIP जुलाई में ग्रो किया है
0: जी।
1: और अगस्त में भी बेहतर रहने की उम्मीद है। तो ये जो जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर है, इसके इंडिकेटर भी जो काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये इनसे जो हमारा क्वार्टर टू के नंबर्स आएंगे GDP के, वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। यहाँ से ये हम एक इंडिकेशन है कि वी आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली,
0: पॉजिटिव इंडिकेशन हमें मिल रहा है।
1: एटलीस्ट हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ बनेगा इस वर्ष के लिए 26-27 के लिए, वो 7% से ऊपर ही रहना चाहिए।
0: जी। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अगस्त में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं विकास की गति 5 साल के निचले स्तर पर आ गई। आज जारी की गई HSBC इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने जुलाई में ये सूचकांक 53.5 से गिरकर 52.8 हो गया। मंदी के बावजूद सूचकांक विस्तार और संकुचन यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अलग करने वाले महत्वपूर्ण 50 अंकों के स्तर से ऊपर बना रहा। उत्पादन

0: और नए ऑर्डर में वृद्धि 5 साल के निचले स्तर पर आने के कारण विनिर्माण पीएमआई अपने दीर्घकालिक औसत 54.2% से 54.2 से नीचे आ गया। कंपनियों ने पिछले महीने मांग में नरमी की सूचना दी, जिसके परिणाम स्वरूप खरीद स्तर और स्टॉक में भी कम वृद्धि हुई। डॉक्टर शर्मा, जब विस्तार से अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं, तो ये समझ पाते हैं कि इसी रिपोर्ट में एक ये भी कारण दिया गया है कि बिक्री में नरम माहौल के कारण अगस्त में रोजगार में मामूली गिरावट देखी गई, जो 2.5 साल में पहली बार हुआ है। तो ये किस तरीके से इम्पैक्ट करती है इसको?
1: देखिए, इसमें प्राची ऐसा है कि जो ग्लोबल लेवल पे हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशन आना स्वाभाविक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म वी आर वेरी स्ट्रांग, जो शॉर्टर टर्म ऐसी फ्लक्चुएशन होती है वो सेंटिमेंटल होती है, तो उसी की वजह से फंडामेंटल्स में भी मामूली तौर पे कई बार शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन आती है। लेकिन जैसे आपने बताया, हमारा जो पीएमआई इंडेक्स है अभी भी जो एक बेंचमार्क है जो 50 अंक का, उसे कहीं ज्यादा
0: ऊपर है जी।
1: और मैन्युफैक्चरिंग में ही जैसे आपने बताया कि अभी भी काफी ऊपर है, अगर चाइना तो 50 से नीचे फिसल चुका है। इसी सब मंदी के दौर को देखते हुए जो चाइना का पीएमआई फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर मैन्युफैक्चरिंग वो 50 से नीचे है, लेकिन हम काफी ज्यादा ऊपर है 50 से। तो एक ऐसी स्थिति में वी आर डूइंग वेरी गुड कंपैरेटिवली ग्लोबल लेवल पे भी, ये ग्लोबल इंडेक्स है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दो महीने की या कुछ ही देर की बात है, जब तक ये कुछ सेटलमेंट होगा, जब वेस्ट एशिया क्राइसिस सेटल होगा, दिस विल अगेन बिकम वेरी रोबस्ट इन द कमिंग मंथ्स।
2: Moving on, India is preparing further customs and banking reforms, including risk-based import screening and a high-level review of the banking sector's role towards building a developed India. In an interview to a news agency on the sidelines of the G20 finance ministers' meeting in Nashville, Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman said the next phase would build on changes already made in direct and indirect taxation. Sitharaman also stated that the government is working to make the movement of imported goods through Indian ports more seamless. In this regard, a key proposal involves deploying scanners and concentrating checks on high-risk importers. The approach would allow customs authorities to focus their scrutiny on higher-risk imports while facilitating faster clearance in other cases. Sitharaman said confidence in the Indian banking system was reflected in foreign deposits and investments made by Indians living overseas. The indicators showed a positive story about trust in Indian banks and the country's macroeconomic position. Now, that last line is extremely important, Dr. Sharma, that the story is very positive because it talks about the trust in Indian banks and the country's macroeconomic position. And on top of that, the reforms that the minister is talking about will certainly boost the banking sector.
1: Yes, because reforms are very, very, very crucial for the growth of the economy, and government has undertaken many reforms, plethora of reforms during the last many years, particularly during the COVID and in the post-COVID years. That's why we are becoming more and more resilient, and our numbers, like the GDP numbers of first quarter at 7.8%, are now indicating that reforms are becoming visible, and this is the effect of effective and meaningful reforms undertaken by the government. Yeah.
0: आगे बढ़ते हैं, अन्य खबरों में है। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता है और मौसमी कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के जरिए बफर स्टॉक को चरणबद्ध और लक्षित तरीके से जारी करना शुरू कर दिया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रक भेजे गए हैं, जिससे 19 शहरों में खुदरा बाजार में हस्तक्षेप के प्रयास काफी बढ़ गए हैं। और अब जान लेते हैं एशियाई बाजारों के हाल। एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आज 0.2% से अधिक बढ़ा और जापान के निकेई सूचकांक में 0.1% से अधिक की गिरावट दर्ज

0: की गई। यूरोपीय बाजारों में ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स लगभग 1% और लंदन का फुटसी 0.5% से अधिक नीचे कारोबार करता नजर आया।
1: US stock markets ended lower yesterday, weighing down by rise in crude oil prices and higher US treasury yields. The Dow Jones Industrial Average slipped 0.7%, the S&P 500 dropped over 0.3%, and the Nasdaq Composite fell 0.1%. Meanwhile, the US indices wrapped up August with gains despite geopolitical tensions in West Asia. The Nasdaq Composite Index advanced 3.9%, the S&P 500 gained 2.6%, and the Dow added 1.3%. Now, Dr. Sharma, how are the US rate expectations and Fed commentary feeding into emerging market risk premium, especially for India, in this oil shock environment that we are in?
2: Mr. Lake, because their inflation still remains in the sticky zone and high also at 3.4%. So, and their this manufacturing sector, though showing signs of some strength, but in the long term is not that much sustainable because demand trajectory is not that much strong in the US and they are facing the slowing growth and high inflation. So going forward, I would say they have to adopt a rational policy environment to support firstly the growth and second to subside the this inflation number. To address the inflation number. So I think the US economy is in a very volatile situation, not a stable situation actually, because of the West Asia impact on the economy and their increased expenditure on war related expenditure and also the consumption segment within the country because of the high tariffs.
1: Okay. Global crude oil prices rose today as the resumption of fighting between the US and Iran in West Asia renewed fears of supply disruptions. Brent crude was trading 1.5% up at $91.88 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.1% higher at $87.54 per barrel when reports last came in. Dr. Sharma, with Brent, with these figures that I just read out, what is your base case oil price range for Q4 2026 if US pressure on Iran intensifies?
2: Mr. Lake, I think nobody can predict the prices for in such a scenario. But if the escalation comes next time, then I would say prices can go past 100 per barrel in the international market.
1: Okay.
2: Yeah.
0: आगे बढ़ते हैं। सर्राफा बाजार में सोना 1.7% की गिरावट के साथ 153,183 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 2.8% लुढ़ककर 230,419 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। डॉक्टर शर्मा, सोने और चांदी को लेकर के खासी दिलचस्पी होती है भारतीय लोगों की, हम लोगों की, तो इसके जो दाम है उस पर मैं आपसे एक टिप्पणी चाहूंगी।
2: देखिए प्राची, जो सोने के दाम है और या चांदी के दाम है, उन्होंने बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाई है इस साल में। अभी हाई किया $5,500 पर ट्रायंस इन इंटरनेशनल मार्केट इन जनवरी फरवरी और फिर वो 4,000 को भी टच किए। आप देखिए कि कितना बड़ा मूवमेंट $1,500 का एक ऑन्स के मुकाबले में रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका जो इंटरनेशनल मार्केट में एवरेज है फॉर द करंट ईयर, that will be at around somewhere between 4,500 to 4,700.
0: Current factors ऐसे क्या मतलब रहे होंगे जिस वजह से, अगर मैं आपसे चाहूँ कि आप इस पर भी प्रकाश डालें।
2: देखिए जो factors हैं वो एक तो buying है, strong buying by the central banks, and second जो global uncertainties हैं, and that create interest for the safe haven. लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन आती है जब डॉलर मजबूत या कमजोर होता है, क्योंकि डॉलर भी बहुत तेज गति से फ्लक्चुएशन लेता है बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस। तो गोल्ड के प्राइसेस भी उसी तरीके से

0: मूव करते हैं, लेकिन इसका एवरेज जो रहेगा मैं ये समझता हूँ कि $4,500-$4,600 पर ट्राई ऑन्स इस साल में
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी कार्यक्रम में आने के लिए।
2: बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स फ्लैट, निफ्टी फॉल्स बाय 25 पॉइंट्स, ग्रोस जीएसटी कलेक्शंस इंक्रीज नियरली 15% टू ऑलमोस्ट 2 lakh crore rupees in August this year, and global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में दर्ज प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2,873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। इसका मुख्य उद्देश्य देश के चिन्हित 100 जिलों में योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना, विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना और जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4,000 से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2,250 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर बल दिया है। कनाडा में हिंदू विश्व

सिंधु कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दुनिया की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और उपासना पद्धतियों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विविधता ही हमारी एकता का आधार है। अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और इन मामलों में जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में दर्ज प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। इसका मुख्य उद्देश्य देश के चिन्हित 100 जिलों में योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना, विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना और जिला स्तर पर बेहद प्रदर्शन सुनिश्चित करना है ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। योजना को 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं, राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी के समन्वय से लागू किया जा रहा है। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए

0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை எஃப்எம் கோல்டு.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

0: के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: Prime Minister further stated that
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
2: सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the

0: Spirit of humanity first, because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
3: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
4: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
5: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय

0: के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
1: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताज़ा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपये प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra

0: 만탄. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सेमिकॉन 2.0 से भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मिली नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार जैन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: आज दुनिया की अर्थव्यवस्था और आधुनिक तकनीक तेजी से सेमीकंडक्टर और चिप्स पर निर्भर होती जा रही है। मोबाइल फोन और कारों से लेकर रक्षा, अंतरिक्ष

0: दूर संचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक लगभग हर आधुनिक तकनीक में सेमीकंडक्टर जरूर मौजूद है और इसी दिशा में भारत सरकार ने देश में ही चिप निर्माण और पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सेमीकॉन 2.0 योजना को अधिसूचित किया है, जिसके लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक का बड़ा बजटीय प्रावधान किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग के बाजार में करीब 10% की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है और वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में कहीं बड़ी भूमिका निभा सकता है। सरकार का लक्ष्य दरअसल केवल भारत में चिप फैक्ट्रियां स्थापित करना ही नहीं, बल्कि डिजाइन से लेकर वेफर निर्माण, चिप उत्पादन, पैकेजिंग, अनुसंधान और प्रतिभा विकास तक एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करना है। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जितेंद्र कुमार जैन साहब, जो आईटी एक्सपर्ट हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आकाशवाणी में।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे आम श्रोताओं के लिए कि कैसे हम इसे समझें कि सेमीकंडक्टर या चिप दरअसल होता क्या है और आज इसका महत्व इतना क्यों बढ़ गया है।
1: देखिए, वैसे तो सेमीकंडक्टर मशीनों के अंदर बिजली के बहाव को कंट्रोल करती है लॉजिकल प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, पर अगर एक आम आदमी को बहुत सरल भाषा में समझाना हो तो सेमीकंडक्टर एक वो छोटी सी चिप है, वो किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट में, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो या कार हो या फोन हो, जो उस पूरे उपकरण का पूरे दिमाग की तरह काम करती है, वहीं से उसमें डेटा प्रोसेसिंग होती है, कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी किसी तरह का फंक्शंस है, लॉजिक्स है, सर्किट है, सब उसके अंदर वो चलते हैं। तो सेमीकंडक्टर को आप एक छोटी सी चिप समझ लीजिए जो किसी भी एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का एक तरह से अंदर का दिमाग और दिल है।
0: जी बिल्कुल, बहुत सरल भाषा में आपने समझाया, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से अगर हम सेमीकंडक्टर निकाल दें तो वो शायद काम न करें, क्योंकि अब चीजें मैनुअल बहुत कम बच गई हैं।
1: हाँ, अब साधारण भाषा के लिए जैसे आप कहें तो जो नई गाड़ियां आ रही हैं, ऑटोनोमस व्हीकल हैं, वो अपने आप रडार के थ्रू सड़क पे देखते हैं, गाड़ी को डिटेक्ट करते हैं, कहाँ जाना है, कब टर्न लेना है, कब ब्रेक लगाना है, वो जो सारी लॉजिकल प्रोसेसिंग जो हो रही है, जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो थिंकिंग हो रही है, जो कैलकुलेशंस चल रही हैं, उसके पीछे जो लॉजिक है, वो पूरा का पूरा एक सेमीकंडक्टर के अंदर होता है या मल्टीपल सेमीकंडक्टर्स के अंदर होता है। ये छोटे से इलेक्ट्रिकल चिप्स हैं, और जिसको भारत के अंदर भी अब इसका उत्पादन हो, इसके ऊपर हमारे विकास की क्षमता हो, उसको लेकर भारत सरकार नई नीतियां बना रही है।
0: जी, एक पूरा इकोसिस्टम दरअसल भारत सरकार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है और सरकार ने सेमीकॉन 2.0 के लिए लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया है। कितना बड़ा फैसला है ये और कितना महत्वपूर्ण है?
1: खाली इसको हमें अर्थव्यवस्था या मतलब जो सेल्फ रिलायंस है या आत्मनिर्भरता के एंगल से नहीं देखना चाहिए, एक राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जड़ा बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि है आज के जमाने में सेमीकंडक्टर इतना महत्वपूर्ण हो गया। अगर आप देखें तो शायद आज दुनिया में तेल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं जितना सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि आपके मोबाइल फोन से लेकर आपका कार, आपके सारे बैंकिंग इकोसिस्टम, आपके यूपीआई, आपके सैटेलाइट्स, आपके डिफेंस सिस्टम्स, आपके डेटा सेंटर, आपके अपने घर के लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, टीवी, फ्रिज, सबके पीछे कोई ना कोई सेमीकंडक्टर है। और अभी पहले कुछ सालों तक पहले हम 90% चीजें सारी बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे सेमीकॉन 2.0 में, जैसे 1 के अंदर तो हम यहाँ पे खाली असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे थे, सरकार अभी चाह रही है कि हमें पूरी की पूरी इस सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को भारत के अंदर निर्मित करना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, ताकि हम यहाँ खाली असेंबलिंग नहीं करें, हम यहाँ पे डिजाइनिंग भी करें, फैब भी करें, मैन्युफैक्चरिंग भी करें, और पूरे विश्व में भी आगे कई देशों के अंदर एक विश्वस्त सप्लायर के तौर पर अपने आप को स्थापित करें।
0: बिल्कुल, और आपने सही कहा कि सेमीकॉन 1.0 के बाद इसीलिए सेमीकॉन 2.0 की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि ये केवल पिछली योजना का विस्तार ही नहीं बल्कि इसमें भारत की रणनीति का नया और व्यापक दृष्टिकोण भी शामिल है और हम पूरी तरीके से इस पे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। मंत्री जी, अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में लगभग 10% की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। ये लक्ष्य कितना महत्वाकांक्षी है और इसे हासिल करने के लिए किन किन प्रमुख चुनौतियों को पार करना होगा?
1: महत्वाकांक्षी तो है, और पर जरूरी भी है। जरूरी इसलिए कि जो आपका पिछला भी सवाल था कि इसमें मात्र सप्लाई चेन से बड़े मुद्दे नहीं, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी जुड़ी है, क्योंकि ज्यादातर डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर, सिस्टम्स के अंदर जो नए एआई चिप्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, आप सैटेलाइट्स ले लीजिए, छोटे छोटे रडार, सब जगह जो सेमीकंडक्टर है,

0: बाहर से लेकर आ रहे थे ज्यादातर। तो कभी युद्ध की स्थिति में या किसी देशों से संबंध खराब होने की स्थिति में हमारे यहाँ ऐसी मतलब समस्या उत्पन्न हो जाए कि हमारे पास सेमीकंडक्टर की सप्लाई नहीं है, उसके कारण ये सेक्टर प्रभावित ना हो, इसलिए हम उस राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती को भारत के अंदर ही हम अभी चाह रहे कि यहीं पर निर्माण हो, ताकि हमें कभी इस तरह की चुनौती का सामना ना करना पड़े। और चूंकि अब हम निर्माण करना ही चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारा सेमीकंडक्टर 1.0 पहले भी एक बिजनेस के एंगल से अच्छा मिशन था, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास है, पॉलिसीज हमारी अच्छी हैं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, हम ये चाह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंट होने के अलावा हम एक तरह से एक एक्सपोर्टिंग सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टिंग नेशन भी बने। तो ये एक एक तरह से पूरा का पूरा ध्याय है।
1: बिल्कुल, आपने कहा जितेंद्र जी कि सेमिकॉन 2.0 की सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये केवल चिप फैक्ट्री लगाने तक और असेंबल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी वैल्यू चेन विकसित करने की बात इसमें कही गई है। एक बार ये जो कंप्लीट इकोसिस्टम है, कंप्लीट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, इसको जरा एक बार और समझाएं आम लोगों की समझ के लिए।
0: देखिए, इसमें आपको खाली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए खाली फैब की बात नहीं, आपको जो उसके लिए जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट है, वो भी हम भारत के अंदर बनाना चाह रहे हैं। जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए, उसका निर्माण भी हम भारत में करना चाह रहे हैं, इससे नौकरियां भी बढ़ेंगी और ऑब्वियसली हमारे इनहाउस टैलेंट भी होगा। आपको चिप डिजाइनर भी चाहिए, है ना, उसके बाद आपको डिमांड भी चाहिए। पहले तो इंटरनल डिमांड आपके यहाँ क्रिएट हो कि आप इंपोर्ट ना करके यहीं से लें। तो इसमें अगर आप देखेंगे, पूरी की पूरी एक तरह से हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म करके डिफेंस और टेलीकॉम सेक्टर में अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना चाह रहे हैं। अब इसमें आपको देखिए, लैंड एक्विजिशन चाहिए, पानी चाहिए, डेटा से मतलब अल्ट्रा क्लीन मैनुफैक्चरिंग कैपेसिटीज चाहिए, और स्किल मैन पावर के अलावा फिर सबसे बड़ी बात है, सब हो भी जाए तो इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। उसके लिए फिर जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए, या तो वो आप यहाँ बनाए या फिर कोई दूसरा देश आपको देने को तैयार हो, और फिर बहुत ही एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन्स भी चाहिए। तो इसके लिए ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये मेरे ख्याल से अगले 10 साल का विजन है, और इसमें कुछ चीजों का निर्माण यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। देखिए, हम असेंबलिंग आज ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बनाऊँ, आज हिंदुस्तान में आईफोन बनता है, उसका मतलब ये नहीं कि आईफोन हमारे यहाँ डिजाइन हुआ या हमने उसका वो चिप बनाई या हमने उसका किया, हम लाते हैं यहाँ पे उसको, हमारे पास हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग फैसिलिटीज, हम लोग कर रहे हैं। अब हम ये चाह रहे हैं उसका जो चिप का डिजाइन है, जो उसका पेटेंट है आईपी, वो भी भारत के अंदर ही उसी का निर्माण, उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग में मशीनें जो लाई गई है, स्पेशलाइज जो प्लांट में लगी है, उनका निर्माण भी भारत के अंदर हो। तो पूरा का पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम, जिसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो उसका राइट है, वो पूरा का पूरा भारत के अंदर उसका निर्माण हो, यहीं पे हम इसको पूरा तो पूरा बनाए। इसलिए जब आप ये बात कर रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर 1.0 में मात्र आप एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहे थे असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का, 2.0 के अंदर आप चिप डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, उसकी पैकेजिंग, उसका सारा इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, टैलेंट, टैलेंट की स्किलिंग, डिजाइनिंग, सब आप भारत के अंदर करना चाह रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, सरकार ने सिलिकॉन फैब के अलावा सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम नाइट्राइड और डिस्प्ले फैब जैसे क्षेत्रों पर भी जोर दिया है। इसे जरा सरल भाषा में बताएं आप कि अलग अलग प्रकार के ये सेमीकंडक्टर क्या हैं और किन क्षेत्रों में ज्यादा उपयोगी होंगे।
0: डिस्प्ले फैब का जैसे आपने उदाहरण दिया, अब आज जितने डिस्प्ले हैं टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, आपकी कार की स्क्रीन के अंदर, ये सारा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का हिस्सा है। और अभी ये पैनल क्या है कि ज्यादातर बाहर से आ रहे थे, कुछ एक पैनल है जो वो बाहर की कंपनियां इंडिया में अपने उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करवा रही हैं, और उसमें फिर एक और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बड़ी टीवी कंपनियों के जो ओरिजिनल डिस्प्ले बोर्ड से पैनल है पीछे जो फायदा, वो हम यही नोएडा में बनाकर, बैंगलोर में बनाकर हम बाहर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वहां उनकी असेंबलिंग होती है, लेबलिंग होती है, फिर वो रीराउट होके पूरा का पूरा एक फिनिश टीवी इंडिया में आता है। तो अब ये हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर ही जो सेक्टर है, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है, उसके अंदर एक बेहतरीन निवेश हो, ताकि जो डिस्प्ले फैब के अंदर जो एक भारत एक तरह से मतलब विश्व के पहले या दूसरे स्थान के अंदर आ जाए। बिकॉज ये कैसा है कि हम ऑलरेडी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, कई कंपनियां हमारी काम कर रही हैं, और ये कंपनियां बड़े जो ब्रांडेड ब्रांड्स हैं, जो वेल नोन रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड है, स्पेशली कोरियन और जापानीज ब्रांड्स, उनके लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि जैसे जैसे यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग होगी अपने ब्रांड के हिसाब से, तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी कम होगी, और हमारे यहाँ का भी पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का और स्किल जॉब्स का, वो यहीं पर डेवलप हो जाएगा। और यही चीजें फिर आपको देखिए डिफेंस और ऑटोमोटिव एयरोस्पेस में भी काम आने वाली है, जो आपके 5th जनरेशन एमका वगैरह के डिस्प्ले हैं, जो दूसरे डिस्प्ले हैं, वो सब यहीं पे पूरे के पूरे बन जाएंगे।
1: जी, कब तक उम्मीद है कि भारत में जो पहली फैब होगी वो शुरू हो सकती है।
0: नहीं, फैब तो ऑलरेडी कहीं लगी हुई है, ऐसा नहीं है, पर वो छोटे छोटे चीजें बना रहे हैं। अभी
1: जी
0: जो बड़ी डिस्प्ले फैब है,
1: जी
0: जिसके ऊपर अब देखिए आपको ना, उसमें आपको एक डिस्प्ले फैब डिस्प्ले के ऊपर मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं, उसके ऊपर आपको एसोसिएटेड सर्किटरी यहाँ पर बनानी है,

0: तब जाके वो पूरा का पूरा एक इनहाउस डिस्प्ले पैनल बनेगा, उस पर इंटीग्रेटेड सेंसर भी आपको यहीं पे बनाने हैं। तो उसका काफी कुछ सामान ऑलरेडी यहाँ पे बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा, पर उसको एक कंप्लीट पैकेज, एक फर्निश फैब जो लगाने की, जो एक बड़े लेवल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात है, चैलेंज उसका है। तो मुझे लगता है मे बी अगले 4-5 साल में ऐसी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगी।
1: जी बिल्कुल, अभी हम विकसित भारत 2047 की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। 2047 यानी वो साल जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा, और उस वक्त हम पूरी तरीके से विकसित राष्ट्र होंगे। सरकार ने योजना बनाई है ऐसी, और हम सब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है जितेन जी, कि ये 2.0 जो है सेमिकॉन, इससे रोजगार के क्षेत्र में कितनी वृद्धि आप देख रहे हैं, और ये अगर कहें कि जीडीपी में भी भारत के कितना ज्यादा सहयोग करने जा रही है, जिससे कि बहुत उम्मीदें हैं, आपका क्या आकलन है?
0: वो तो आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, तो ऑब्वियसली आपको फॉरेक्स का फायदा यहाँ पर होने वाला है। आज 1,27,000 करोड़ का आउटले की आप बात कर रहे हैं, जो सारी हाईली स्किल्ड जॉब्स होंगी तो जनरेट होंगी, वो भी भारतीय नागरिकों को मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सेक्टर बढ़ेगा, और फिर वो खाली ये बड़ी फैब और इंडस्ट्रीज की बात नहीं है, जो उसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिकल कॉम्पोनेंट लगने हैं, उसके लिए जो लोकल सप्लाई चेन चाहिए वो भी हिंदुस्तान में, उनको भी पूरा का पूरा मौका बढ़ावा मिलेगा। जो इनडायरेक्टली आपके एंसिलरी जॉब्स हैं वो पूरे के पूरे बढ़ेंगे। फिर आप जब ये डिफेंस एंड टेलीकॉम में स्ट्रेटेजिक रेसिलियंस आपकी बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, तो वो जो सेक्टर यहाँ पर चीजें बनेगी उसमें भी आपको जॉब्स आनी है। फिर सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, जिसमें डिजाइन से लेके पूरा उनकी मैन्युफैक्चरिंग, या मतलब एक खाली चिप डिजाइन की ही बात करें
1: जी,
0: तो यहाँ पे मान लीजिए 100-150 स्टार्टअप हैं, तो उनके अंदर जो नौकरियां हैं वो साधारण नौकरियां नहीं है, वो हाई रिस्क नौकरियां होंगी। तो आप भारत को आने वाले समय के अंदर, मैं ये मान के चल रहा हूँ, जो चैलेंज आपको लग रहा है कि जो AI से आप जॉब लॉस वगैरह की बातें कर रहे हैं, वो हाईली स्किल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उन जॉब्स का नया रिप्लेसमेंट वगैरह आएगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि कम से कम अगले 5-6 साल के अंदर करीबन 80,000 रुपए की नौकरियां खाली सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अंदर, 80,000 नौकरियां यहाँ पर जो नई नौकरियां हैं वो आएंगी।
1: बिल्कुल,
0: हो सकता है थोड़ी कम ज्यादा हो जाए, मगर अगर आप पूरे दशक के अंदर एंड में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सेक्टर लाखों जॉब्स करेगा। इसमें खाली हाईली स्किल्ड जॉब्स नहीं है, फिर वो जो इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मल जॉब्स भी आती हैं, लो स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, मिड स्किल्ड, वो सब मतलब जो है पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री यहाँ पर खड़ी है।
1: सेमी कंडक्टर का जो क्षेत्र है बहुत बड़े पैमाने पर, इसका मतलब है कि भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने जा रहा है। दरअसल भारत अब केवल दुनिया के लिए बाजार या तकनीकी प्रतिभा उपलब्ध कराने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि भविष्य की डिजिटल दुनिया को चलाने वाली चिप्स की वैश्विक वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हिस्सा बनने की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है, और सेमिकॉन 2.0 इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए जितेन कुमार जैन जी, IT विशेषज्ञ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सेमिकॉन 2.0 से भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मिली नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे IT विशेषज्ञ जितेन कुमार जैन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और YouTube चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। मंथन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते

0: हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CV जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया।
2: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजनाओं में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रमों के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, CB George, in a media briefing said, The Prime Minister expressed concern over the ongoing

0: 63 भारतीय नागरिकों को बचाया गया, खोज अभियान जारी और लक्ष्य सेन, श्रीकांत और तन्वी शर्मा कल चीन मास्टर्स बैडमिंटन में चुनौती पेश करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक भर्ती, मदद, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। सम्मेलन का समापन आतंकवाद के से निपटने, जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति के बनने के साथ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सेबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: Prime Minister further stated that
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
2: Sovereignty and territorial integrity of nations।
0: भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से पार्टी मुख्यालय में मुलाकात की। इस बैठक में भारत और रूस के दीर्घकालिक और आपसी विश्वास पर आधारित संबंधों पर चर्चा की गई। श्री नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मजबूत आपसी समझ और विश्वास को रेखांकित करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच नियमित उच्च स्तरीय बैठकों से द्विपक्षीय संबंधों को निरंतर गति मिल रही है। भाजपा अध्यक्ष ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में राजदूत अलीपोव के योगदान की भी सराहना की। रूसी राजदूत अलीपोव ने देशवासियों से सीधे जुड़ने के अनूठे प्रयास के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम की भी सराहना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत ने अपनी पहली कनाडा यात्रा के दौरान ग्रेटर टोरंटो एरिया में प्रवासी भारतीयों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में डॉ. भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और उपासना पद्धतियों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विविधता ही हमारी एकता का आधार है। कार्यक्रम में कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री जेसन केनी मुख्य अतिथि के में शामिल हुए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका एक बार फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को नुकसान तथा प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण फोरम में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।

0: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर।
1: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
0: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
2: दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग को लेकर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आज से मिडिल ईस्ट एनर्जी 2026 प्रदर्शनी और सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन आगामी 3 सितंबर तक चलेगा। ये पश्चिम एशिया क्षेत्र में बिजली और ऊर्जा उपयोग की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियों में से एक है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1000 को पार कर गई है और प्रभावित 8 जिलों से सुरक्षा बलों ने कई और शव बरामद किए हैं। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार लगातार हो रही बारिश के बीच राहत और बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अचानक आई भीड़ बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 163 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिनमें पिछले महीने की 26 तारीख के बाद बचाए गए 5 और लोग भी शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार कल तक बचाए गए भारतीयों की संख्या 158 थी। इसके अलावा आज चीन से रवाना होने वाले लोगों की संख्या 151 दर्ज की गई है। यूक्रेन में हुए एक हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर वहां स्थित भारतीय दूतावास ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वो शोक संतप्त परिवार के लगातार संपर्क में है और उन्होंने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दूतावास मृतक के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत वापस भेजने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही भारतीय दूतावास इस मामले को लेकर यूक्रेन के अधिकारियों और संबंधित कंपनी के भी संपर्क में है। चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग कल अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग सेट्टी की जोड़ी पहले दौर में मलेशिया के जुनैदी आरिफ और कानखाई जिंग के खिलाफ उतरेगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो का मुकाबला टोनरंग साहेंग और टोनकीद साहेंग से होगा। सोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डी की दूसरी भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी ताइपी के वो ग्युयान जूंग और ली चियासीन के साथ खेलेगी। इससे पहले आज महिला सिंगल्स में उन्नीत हुड्डा और पुरुष डबल्स में हरिहन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी का अभियान हार के साथ समाप्त हुआ। उन्नति हुड्डा को पहले दौर में दक्षिण कोरिया के किम गा यून ने हार का सामना करना पड़ा, जबकि एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी को बीच में ही मुकाबला छोड़ना पड़ा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। आतंकवाद से निपटने, जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या 1000 से अधिक हुई। 163 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। खोज अभियान जारी और लक्ष्य सेन, श्रीकांत और तन्वी शर्मा कल चीन मास्टर्स बैडमिंटन में चुनौती पेश करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on SCO member countries to unite against entire terror ecosystem. SCO summit culminates with 13 outcome agreements spanning counter-terrorism, climate action and digital cooperation. Prime Minister concludes his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Nepal floods death toll crosses 1,000.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक

0: एक तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद, वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, in a media briefing said the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
3: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
2: Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. The leaders of the member states also signed

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सबका स्वागत है. स्टूडियो में आज श्रोताओं चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका
0: वार्म वेलकम.
2: जी शुक्रिया, थैंक यू.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस.
0: इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स फ्लैट, निफ्टी फॉल्स बाय 25 पॉइंट्स. ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस इंक्रीज नियरली 15% to almost 2 lakh crore rupees in August this year. And global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज सेंसेक्स सपाट बंद हुआ, वहीं निफ्टी 25 अंक नीचे आया. कुल जीएसटी संग्रह अगस्त माह में लगभग 15% बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया.

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए श्रोताओं अब जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 13 अंक फिसलकर 76,944 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 25 अंक लुढ़ककर 24,056 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग 1.5%, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले भू राजनीतिक तनाव के बीच बाजार गिरावट के साथ खुले, लेकिन शुरुआती नुकसान से उबरकर सकारात्मक दायरे में आ गए। हालांकि सत्र के दूसरे भाग में बाजार ने बढ़त गंवा दी, साथ ही निफ्टी वायदा और विकल्प की साप्ताहिक समाप्ति ने उतार चढ़ाव को और बढ़ा दिया।
0: Benchmark domestic equity indices ended marginally lower today. The Sensex declined 13 points to close at 76,944. The Nifty dropped 25 points to settle at 24,056. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 1.4%, while the small-cap 100 index dipped over 0.2%. Earlier, the markets opened lower amid ongoing geopolitical tensions but recovered from their initial losses and turned positive. However, they failed to sustain their upward momentum during the second half of the session, with the weekly expiry of Nifty futures and options contracts adding to the volatility.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक नुकसान में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में मारुति 4.2%, वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिगो और बजाज फिनसर्व में लगभग 2.5% की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत आईटीसी 4%, एचसीएल टेक 3.2% और इन्फोसिस में 2.5% से अधिक का उछाल आया।
0: In the sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, auto declined 1.4%, consumer durables over 1.2%, and telecommunications as well as realty dipped over 1%. In contrast, information technology rose over 1.2%, focused IT gained 1.2%, and energy added over 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,563 companies declined, 1,760 advanced and 236 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 22 पैसे मजबूत होकर 94.95 रुपए पर बंद हुआ। डॉक्टर शर्मा, आज अगर हम आज की अगर चाल देखें बाजार की, तो इसे आप कैसे देखते हैं? एकदम सीधे सवाल से कार्यक्रम शुरुआत करते हैं।
2: देखिए, बाजार में जो रुख है, खास करके जो एक कंसोलिडेशन का रुख है
1: जी,
2: जो इन्वेस्टर है वो कोई मेजर मूव नहीं लेना चाहता, यहीं पे कंसोलिडेट करना चाहता है या फिर जहां पे प्रॉफिट आ रहा है उसको थोड़ा बुक करके या फिर किसी और स्टॉक में जहां पे कुछ मुनाफे के चांस बन सकते हैं तो उसमें खरीदारी करना चाहता है। तो एक कोई मूव जैसे एक मेजर इन्वेस्टमेंट मूव
1: जी,
2: ऐसा कोई बाजार में रुख नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज जो है ग्लोबल लेवल की, एक तो क्रूड प्राइसेस जो एक मेजर अनसर्टेनिटी है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, अगर वापस एक यूएस और ईरान में एस्केलेशन आती है तो प्राइसेस जंप ले सकते हैं, जिसका सीधा असर जो है एनर्जी प्राइसेस के ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन के ऊपर जाएगा। और फिर दूसरा जो बॉन्ड यील्ड, जो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स में एक राइज है जिसकी वजह से कंपैरेटिवली जो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होती है, तो वो एक कारण है। और तीसरा जो एक अनसर्टेनिटी जो ग्लोबल लेवल पे, जो चाहे आप ग्रोथ को लेके कहें या दूसरे फैक्टर जो है, जो वॉर रिलेटेड हेडविंड्स है, और जो अभी रशिया और यूक्रेन में भी

0: एस्केलेशन हुई है कुछ युद्ध में, तो ये सभी फैक्टर जो है मार्केट के सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज जो देखा जाए अगस्त के महीने में काफ़ी तेज जो है इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, एफआईआई का काफ़ी फ्लो आया है, तो कुल मिला के जो इंडिया की जो स्थिति है मार्केट की उसको मैं एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर सेंटिमेंट कहूँगा कि इन्वेस्टर नेगेटिव भी नहीं है और वो कोई मेजर मूव भी आगे नहीं लेना चाहता बिकॉज ऑफ द हेडविंड्स।
1: लेकिन हमने पिछले तीन हफ्ते में लगातार देखा कि मार्केट जो है एक तरीके से स्लाइड डाउन ही करता हमें नजर आ रहा है।
0: देखिए उसमें क्या है, पहले इसी तरीके से मार्केट ने थोड़ी बढ़त भी ली थी, तो कुल मिला के जो रेंज है मार्केट की, जैसे मैंने पहले भी अपने इसी कार्यक्रम में बताया था कि अभी हम पिछले एक साल से लगभग देख रहे हैं कि जो मार्केट की रेंज है वो लगभग कोई 23,500 से लेके 25,500 तक 2000 के पॉइंट, और बीच में जो मेन जो 1000 का जो मूवमेंट है जो लगभग कोई 24,000 23,000-24,500 के बीच में मार्केट जब ऊपर जाती है 24,500 के आसपास तो एक मुनाफा वसूली आती है, क्योंकि मार्केट को कोई और आगे एक ऐसी ब्रेक थ्रू नहीं मिलती बिकॉज ऑफ द ग्लोबल हेडविंड्स, और जब मार्केट डिसेलरेट करती है तो उसको सपोर्ट मिल जाती है बिकॉज ऑफ अवर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। तो ये एक ऐसा रुख बना हुआ है, जब ऊपर जाती है तो ग्लोबल फैक्टर्स सामने आते हैं, ग्लोबल कोई जो रिस्क हैं जो अनसर्टेनिटीज हैं वो मार्केट के सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, और मार्केट नीचे कोई डीप करेक्शन में भी नहीं जाना चाहती बिकॉज वी आर फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारा चाहे वो कोई भी नंबर हो, हमने जीडीपी नंबर्स हो, जैसे हम पहले कई हर एक बार हम बात करते हैं कि अवर जीडीपी इज वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और दूसरे जो फंडामेंटल्स हैं बहुत स्ट्रांग है और एक्सटर्नल सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो मार्केट उनके साथ भी ऐसा कुछ कंप्रोमाइज नहीं करके मार्केट डिसेलरेट हो या डीप करेक्शन में जाए ऐसा भी नहीं है।
2: ओके डॉक्टर शर्मा, यू मेंशन द जीडीपी ग्रोथ, वी हैड अ स्ट्रांग जीडीपी ग्रोथ नंबर 7.8%, even that did not translate into a clear rally today. What does this tell us about how markets are pricing growth versus risk today?
0: Yes, Mr. Lake, there is no direct correlation between the market rise and the GDP growth, because both are the different segments. Markets are on the basis of sentiments, and GDP is on the basis of our strong fundamentals. But in the long run, both are very correlated, because when GDP grows significantly, like during the last 4-5 years, we observed that GDP is growing more than 7% on an average, 7.5% on an average, and the markets are also in the same move. Markets are increasing significantly year after year. But in the shorter period, on the day-to-day basis, or weekly movements or the monthly movements, these are not observing, because as I mentioned to Prachi, that when the markets go up, then they observe the global fundamentals, global uncertainties. When the markets go down, there is some correction because of those negative fundamentals from the global side, then the markets are supported by the domestic fundamentals. Markets don't want to
1: go beyond
0: a line. Markets always remain at a level that this is the level despite the global headwinds, markets should remain here.
2: Okay, point taken. How important are the FII selling pressure and global fund flows in explaining the recent 3+ week underperformance of the Sensex?
0: I don't see FIIs are that much significant now in the recent years, because our markets are supported by the retail segment and our DIIs majorly. But the FIIs support the rally, but their contribution or their support or our dependency on them is not that much high. Because when the markets go up, markets make new highs, or markets are in the strong bull run, then the FIIs also come to invest in India. So FIIs always look at the opportunities, because they have the hot money. They invest, then they book profit and they go away. Again they come and they again invest when the market opportunity is there. When there is a great correction, then the FIIs comes to invest in India, because they know about India's story. They know about India's long-term story, that India is a promising growth story. But when they

0: credit growth, margins, and asset quality over the next 2 to 3 quarters?
1: Mr. Lake, I would say the sectoral movements are always there. When there is a bull run or the bear run, or the markets are stable, the sectors, sometimes the profit booking happens in one sector and where people shift from one to another sector to observe the opportunities existing in that particular sector. But the growth, like the bank credit or the other segments, are very strong. Like recently, bank credit is growing in the double digits. And IIP numbers are also very strong at 6.7% for the month of July. Exports are very strong at 13% during the last 5 months, starting from April to July. 4 months. So this double digit trajectory is indicating a strong growth momentum, or the economic momentum in the coming quarters also. So this is the, I believe, fundamental scenario of the Indian economy.
2: Dr. Sharma, जैसा अभी राजेश जी ने भी बताया कि ऑटो सेक्टर को लेकर के, उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर को लेकर के जो आज हमने थोड़ा सा एक उसमें जो गिरावट देखी है, तो इसका कोई विशेष कारण है, या आप जैसा बता रहे हैं कि बस एक रोटेशन है ये ऐसा, या कोई फ्यूचर में कुछ ऐसा?
1: कोई ऐसा नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन यूएस में आगे फेड रेट कैसे मूव करता है, वो स्टेबल पॉलिसी स्टांस रखता है या फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, वो डिपेंड करेगा. दैट विल बी सम क्रूशल फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर movement in the banking sector or the financial sector, because when they increase the interest rate, then there are expectation that if inflation goes up, then that happens in other countries also.
2: तो आपके लिहाज से अभी अगर हम एक आम निवेशक की तरफ से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कौन से ऐसे प्रमुख आपकी नजर में जो सेक्टर्स हों, जो क्षेत्र हों जहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, इन्वेस्ट करना जहाँ पर समझदारी मानी जाएगी आज की तारीख में, जबकि हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकली चीजें जो हैं काफी अस्थिर हैं, तो ऐसे में आप कौन से सेक्टर्स जो हैं वो बताना चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: देखिए, वैसे तो प्राची, जैसे मैं बताता हूँ, इंडिया इज अ प्रॉमिसिंग स्टोरी. इंडिया में ही इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी चीज है, और उसमें भी पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो जो मेन ग्रोथ सेंट्रिक सेक्टर्स हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर एक भारत की जो विकसित भारत की जो बुनियाद है, विकसित भारत को आगे प्रमोट कर रहे हैं. सो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है. इसके अलावा जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग है, सरकार ने कितनी मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स की हैं, पीएलआई स्कीम दी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर रिफॉर्म्स हो रही हैं, और मैन्युफैक्चरिंग हमारा डबल डिजिट में ग्रो भी कर रहा है अभी, और एक्सपोर्ट्स बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर ऑल्सो वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. देन द बैंकिंग, देन एनर्जी सेक्टर, ऑल दी सेक्टर्स आर आई बिलीव वेरी स्ट्रांग part of our growth trajectory.
0: So if we were to look at the geopolitical scenario, if Iranian barrels are further squeezed out of the market, how large an incremental supply shock are we talking about, and who are the marginal buyers and sellers who would be adjusting?
1: I think the major markets, the major emerging economies are in the major limelight. Actually, they are the stakeholders in the buying and selling segment. But the monopolistic powers sometimes use and are in their vested interests. That is impacting the whole trajectory of the world natural resources. But I would say there must be a great balance between the such things. Yeah.
2: पिछले महीने वस्तु और सेवा कर के संग्रह में वृद्धि हुई और ये 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले सालाना आधार पर 14.8% की बढ़ोतरी है. वित्त मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कुल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,37,249 करोड़ रुपए रहा, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 9.3% अधिक है. आयात से होने वाला जीएसटी संग्रह 29% बढ़कर

0: 64,604 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे कुल मासिक संग्रह को बढ़ावा मिला। डॉक्टर शर्मा, आंकड़े तो काफी लुभावने हैं, अच्छे आए हैं। क्या ये इंगित करते हैं कि आने वाला जो तिमाही का जो परिणाम जो हो सकता है वो शायद बेहतरी की तरफ ही हो?
1: जी बिल्कुल प्राची, देखो जीएसटी एक सप्लाई साइड इंडिकेटर है जो बताता है कि जो हमारी सप्लाईज हैं वो इंटैक्ट है, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एक्सपेंड हो रही हैं, अवर प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर इंक्रीजिंग। और दूसरा डिमांड साइड फंडामेंटल्स, जैसे हमारा ऑटो सेल्स हो गया या फिर हमारी एफएमसीजी की ग्रोथ होगी, उससे पता चलता है कि हमारी डिमांड स्ट्रांग है। तो ये इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि ये जो महीने हैं जुलाई अगस्त सितंबर, दीज आर आल्सो वेरी स्ट्रांग। हमें अगस्त तक का तो पता चल ही रहा है कि जीएसटी नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग। अभी एक्सपोर्ट का डेटा आएगा, उसमें भी हम पॉजिटिव हैं कि बहुत अच्छा एक्सपोर्ट नंबर भी आएगा हमारा, जैसे पहले 13% का भी हो चुका है। और इसके अलावा जो आईआईपी नंबर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि 6.7% पे आईआईपी जुलाई में ग्रो किया है और अगस्त में भी बेहतर रहने की उम्मीद है। तो ये जो जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर है, इसके इंडिकेटर भी जो काफी स्ट्रांग है, तो ये इनसे जो हमारा क्वार्टर टू के नंबर्स आएंगे जीडीपी के, वो भी काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। यहाँ से ये हम एक इंडिकेशन है कि वी आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंट,
0: पॉजिटिव इंडिकेशन हमें मिल रहा है।
1: एटलीस्ट हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ बनेगा इस वर्ष के लिए 26-27 के लिए, वो 7% से ऊपर ही रहना चाहिए।
0: जी। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अगस्त में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं विकास की गति 5 साल के निचले स्तर पर आ गई। आज जारी की गई एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने जुलाई में ये सूचकांक 53.5 से गिरकर 52.8 हो गया। मंदी के बावजूद सूचकांक विस्तार और संकुचन यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अलग करने वाले महत्वपूर्ण 50 अंकों के स्तर से ऊपर बना रहा। उत्पादन और नए ऑर्डर में वृद्धि 5 साल के निचले स्तर पर आने के कारण विनिर्माण पीएमआई अपने दीर्घकालिक औसत 54.2 से नीचे आ गया। कंपनियों ने पिछले महीने मांग में नरमी की सूचना दी, जिसके परिणाम स्वरूप खरीद स्तर और स्टॉक में भी कम वृद्धि हुई। डॉक्टर शर्मा, जब विस्तार से अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं, तो ये समझ पाते हैं कि इसी रिपोर्ट में एक ये भी कारण दिया गया है कि बिक्री में नरम माहौल के कारण अगस्त में रोजगार में मामूली गिरावट देखी गई, जो 2.5 साल में पहली बार हुआ है। तो ये किस तरीके से इम्पैक्ट करती है इसको?
1: देखिए, इसमें प्राची ऐसा है कि जो ग्लोबल लेवल पे हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशन आना स्वाभाविक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म वी आर वेरी स्ट्रांग, जो शॉर्टर टर्म ऐसी फ्लक्चुएशन होती है वो सेंटिमेंटल होती है। तो उसी की वजह से फंडामेंटल्स में भी मामूली तौर पे कई बार शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन आती है। लेकिन जैसे आपने बताया, हमारा जो पीएमआई इंडेक्स है अभी भी जो एक बेंचमार्क है जो 50 अंक का, उसे कहीं ज्यादा
0: ऊपर है जी।
1: और मैन्युफैक्चरिंग में ही जैसे आपने बताया कि अभी भी काफी ऊपर है, अगर चाइना तो 50 से नीचे फिसल चुका है। इसी सब मंदी के दौर को देखते हुए जो चाइना का पीएमआई फॉर द मंथ ऑफ अगस्त और मैन्युफैक्चरिंग, वो 50 से नीचे है, लेकिन हम काफी ज्यादा ऊपर है 50 से। तो एक ऐसी स्थिति में वी आर डूइंग वेरी गुड कंपैरेटिवली ग्लोबल लेवल पे भी, ये ग्लोबल इंडेक्स है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दो महीने की या कुछ ही देर की बात है, जब तक ये कुछ सेटलमेंट होगा, जब वेस्ट एशिया क्राइसिस सेटल होगा, दिस विल अगेन बिकम वेरी रोबस्ट इन द कमिंग मंथ्स।
2: Moving on, India is preparing further customs and banking reforms, including risk-based import screening and a high-level review of the banking sector's role towards building a developed India. In an interview to a news agency on the sidelines of the G20 finance ministers' meeting in Nashville, Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman said the next phase would build on changes already made in direct and indirect taxation. Sitharaman also stated that the government is working to make the movement of imported goods through Indian ports more seamless.

0: this regard, a key proposal involves deploying scanners and concentrating checks on high-risk importers. The approach would allow customs authorities to focus their scrutiny on higher-risk imports while facilitating faster clearance in other cases. Sitharaman said confidence in the Indian banking system was reflected in foreign deposits and investments made by Indians living overseas. The indicators showed a positive story about trust in Indian banks and the country's macroeconomic position. Now, that last line is extremely important, Dr. Sharma, that the story is very positive because it talks about the trust in Indian banks and the country's macroeconomic position. And on top of that, the reforms that the minister is talking about will certainly boost the banking sector.
1: Yes, because reforms are very, very crucial for the growth of the economy, and government has undertaken many reforms, plethora of reforms during the last many years, particularly during the COVID and in the post-COVID years. That's why we are becoming more and more resilient. And our numbers, like the GDP numbers of first quarter at 7.8%, are now indicating that reforms are becoming visible. And this is the effect of effective and meaningful reforms undertaken by the government. Yeah.
2: आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों में है सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता है और मौसमी कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के जरिए बफर स्टॉक को चरणबद्ध और लक्षित तरीके से जारी करना शुरू कर दिया गया है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रक भेजे गए हैं जिससे 19 शहरों में खुदरा बाजार में हस्तक्षेप के प्रयास काफी बढ़ गए हैं और अब जान लेते हैं एशियाई बाजारों के हाल एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आज 0.2% से अधिक बढ़ा और जापान के निकेई सूचकांक में 0.1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई
0: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे एज द रिजम्पशन ऑफ फाइटिंग बिटवीन द यूएस एंड ईरान इन वेस्ट एशिया रिन्यूड फियर्स ऑफ सप्लाई डिसरप्शंस Brent crude was trading 1.5% up at $91.88 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.1% higher at $87.54 per barrel when reports last came in. Dr. Sharma, with Brent, with these figures that I just read out, what is your base case oil price range for Q4 2026? If U.S. pressure on Iran intensifies?
1: Mr. Lake, I think nobody can predict the prices for in such a scenario. But if the escalation comes next time, then I would say prices can go past 100 per barrel in the international market.
0: Okay.
1: Yep.
2: आगे बढ़ते हैं सराफा बाजार में सोना 1.7% की गिरावट के साथ 153,183 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 2.8% लुढ़ककर 230,419 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी डॉक्टर शर्मा सोने और चांदी को लेकर के खासी दिलचस्पी होती है भारतीय लोगों की हम लोगों की तो इसके जो दाम है उस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी
1: देखिए प्राची जो सोने के दाम है और या चांदी के दाम है उन्होंने बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाई है इस साल में अभी हाई किया $5,500 पर ट्रायंस इन इंटरनेशनल मार्केट इन जनवरी फरवरी और फिर वो 4,000 को भी टच किए आप देखिए कि कितना बड़ा मूवमेंट $1,500 का एक ऑन्स के मुकाबले में रहा है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनका जो इंटरनेशनल मार्केट में एवरेज है फॉर द करंट ईयर That will be at around somewhere between 4,500 to 4,700.
2: Current factors ऐसे क्या मतलब रहे होंगे जिस वजह से अगर मैं आपसे चाहूँ कि आप इस पर भी प्रकाश डालें
1: देखिए जो factors हैं वो एक तो buying है strong buying by the central banks and second जो global uncertainties हैं and that create interest for the safe haven लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन आती है जब डॉलर मजबूत या कमजोर होता है क्योंकि डॉलर भी बहुत तेज गति से फ्लक्चुएशन लेता है बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस तो गोल्ड के प्राइसेस भी उसी तरीके से मूव करते हैं लेकिन इसका

0: एवरेज जो रहेगा, मैं ये समझता हूँ कि $4,500-4,600 पर ट्राई ऑन्स इस साल में
1: जी
0: रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी कार्यक्रम में आने के लिए।
2: बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स फ्लैट, निफ्टी फॉल्स बाय 25 पॉइंट्स, ग्रोस जीएसटी कलेक्शंस इंक्रीज नियरली 15% टू ऑलमोस्ट 2 lakh crore रुपीज इन ऑगस्ट दिस ईयर, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंथ्स। टिल टुमारो, गुड बाय।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

0: திரையிடம் தொடர்வது செய்திகள்.
1: பிரதமர் நரேந்திர மோடி ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।

0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की चार दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों के कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा किसानों को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में जर्मनी के पर्यावरण मंत्री कार्स्टन श्नाइडर से मुलाकात की। बैठक में चक्रीय अर्थव्यवस्था, कचरा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक और टिकाऊ समाधान पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि भारत और जर्मनी जलवायु संरक्षण और नए प्रयोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से दो दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब और ECI नेट पर सम्मेलन होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन पर हाल में हुए रूसी हमलों में मारे गए 12 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। उन्होंने बताया कि ड्रोन और मिसाइल हमलों में कई शहरों में आवासीय इमारतों और नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization SCO to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek yesterday, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, in a media briefing said the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
2: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
1: The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan yesterday. The 26th Shanghai Cooperation Organization Summit concluded with 13 key outcomes. The outcomes cover counter-terrorism, climate action, energy, disaster management and digital cooperation. Secretary West informed that the summit approved 4 MOUs and more than 20 decisions. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Union Commerce and Industry

0: தோள் கொடுப்பதில் தோழனாய், கற்றுக் கொடுப்பதில் ஆசானாய், வழிகாட்டுவதில் சான்றோனாய், சிறியவர் பெரியவர் இளைஞர்கள் பெண்கள் இவர்களின் முன்னேற்றத்தில் உங்கள் அகில இந்திய வானொலி. அனைத்து இயற்கை சீற்றங்களிலும் சிதையாமல் உங்களுடன், அனைத்து இடர்பாடுகளிலும் இடைவிடாமல் உங்கள் சேவையில் அகில இந்திய வானொலி, என்றும் உங்கள் நலனில்.
1: நிறைவடுத்து இறைவின் மடியில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
3: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 20

से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से दो दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों से सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वो मुंबई भी जाएंगे जहां वे हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। 1995 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर को मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। श्री ठाकुर कार्मिक मंत्रिमंडल और योजना विभाग के मुख्य सचिव के साथ साथ मुख्य सतर्कता आयुक्त और नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन के प्रधान आवासीय आयुक्त का कार्यभार भी संभालेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। देश के ज्यादातर भागों में ऐसी ही स्थिति की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: வந்தா
1: அப்பா பக்கம் வந்தா
0: அம்மா முத்தம் தந்தா லல்ல

அடுத்து டி எம் சௌந்தரராஜன் பாடிய பாடலை கேட்கலாம்.

0: சில நொடிகள் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापारों को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी।

वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ईसीआई नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वे मुंबई भी जाएंगे, जहां वे हीरा बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। एयर मार्शल विवेक खांडे ने कल भारतीय वायुसेना में महानिदेशक चिकित्सीय सेवाओं का पदभार संभाल लिया है। उन्हें स्थायी रूप से भारतीय वायुसेना में तैनात किया गया है। एयर मार्शल खांडे दिसंबर 1988 में सेना चिकित्सा कोर में शामिल हुए थे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: வனம் போல் இருக்கும் நிலை பார்க்கிறேன். அன்பு பணிவு அடக்கம் எங்கே
1: ஒழித்த பாடலுடன் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி நினைவு பெறுகின்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியில் இருந்து.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
3: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में भारत में डाटा सेंटर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुगमता पर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डाटा सेंटर, क्लाउड सेवा प्रदाताओं, बिजली उत्पादकों और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ नियमों को सरल बनाने और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा।

बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। देश के ज्यादातर भागों में भी ऐसी ही स्थिति की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे थे छोटा गंधर्व द्वारा गाई हुई ये ठुमरी। आइए कार्यक्रम में आप सुनते हैं ठुमरी मिश्र झिंझोटी राग में। कलाकार है पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले।

0: யதே ட்ரீ மிஷ்
1: நிறைவு பெற்றது இனிய ராகம். இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
3: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणाम वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में आज आयोजित होने वाले मोटर कार किड रिहर्सल के मद्देनजर एक यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात परामर्श जारी करते हुए पुलिस ने बताया कि आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजधानी के मुख्य रास्तों पर यातायात बाधित रहेगा। इनमें सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और 12 खंबा रोड सहित अन्य सटे मार्ग शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब और ECI नेट पर सम्मेलन होगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति की उम्मीद है। देश के ज्यादातर भागों

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார் பல். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के संबंध में दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों पर चिंता भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करने और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: जल अवसंरचना परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन, जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन अभियान, पेयजल प्रणालियों के स्रोतों की स्थिरता तथा जल जीवन मिशन का 2रा चरण। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के अंतर्गत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर बल दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दौरे पर रहेंगे। वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वे मुंबई भी जाएंगे, जहां वे हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में आज आयोजित होने वाले मोटर कारकेड रिहर्सल के सिलसिले में यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजधानी के मुख्य रास्तों पर यातायात बाधित रहेगा। इनमें सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और 12 खंभा रोड सहित आसपास के अन्य मार्ग शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा के दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और दिल्ली में भी आज तेज बारिश की संभावना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur.